एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दें। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

रामचंद्र भगवान की, श्री कौशल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री कैकेयी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रा नंदन भगवान की, श्री चारो भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की।

अदब तरु बविचारी लोचन विराम तनु घन श्याम निज आयुध बुझ चार।

विप्रदेन सुर संतैता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र की जय श्री अयोध्या राम जी लला जी की जय श्री पवन सुत हनुमान जी की जय श्री उमापति महादेव जी की जय श्री रमापति रामचंद्र जी की जय श्री वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। बोलो भाई सब संत।

भर्जनम् भवबीजानाम् अर्जनम् सुखसम्पदान्तर्जनम् यन्दूतानाम् राम रामेति गर्जनम् श्री सीतारामनाम महाराज की। संत बड़े परमार्थी वेद धरे अवधूत, राम नाम की गर्जना भाग्यायम दूत, श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री राम लला भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

श्रोताओं, आज शुक्रवार है, 10 जुलाई 2024, पंचांग 1948 के अषाढ़ महीने की 19वीं तिथि। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण लेकर हम उपस्थित हैं। उद्घोषक इकबाल कादिर का हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करें। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का 8वां दिन है। सभी यात्रियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा की हम मनोकामना करते हैं और आज के इस विशेष प्रसारण का आरंभ करते हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल, और आप हमारा ये विशेष प्रसारण OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 आज यात्रा का 8वां दिन है। उम्मीद करते हैं कि सभी यात्रीगण स्वस्थ होंगे और जो आज पवित्र गुफा में जाकर दर्शन करने के ख्वाहिशमंद होंगे वो एक जोश और जज्बे के साथ, एक उत्साह और उल्लास के साथ अपने अपने सफ़र पर रवा दवा होंगे। आज जहां तक बात करें, कुल मिलाकर अभी जो समय हुआ है उसमें हम घाटी के विभिन्न भागों से जो हमारे संवाददाता होते हैं उनसे बात करते हैं। कल के दिन के हवाले से, जो 7वां दिन था श्री अमरनाथ जी यात्रा का, उसके हवाले से उनके साथ बात करेंगे, और आज के दिन के हवाले से क्या अपेक्षाएँ, क्या उम्मीदें और क्या कुछ उनके पास अपडेट्स हैं हमारे लिए, वो भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फ़िलहाल आप भक्ति संगीत सुनिए और हम जल्द लौटते हैं और आपसे हमारे संवाददाताओं को रूबरू कराते हैं।

0: उत्साह, उल्लास और एक जोश और जज्बे के साथ आज के प्रसारण में आप हमें सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल के साथ साथ डीटीएच और हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। सुबह का जो समय होता है वो होता है आप तक ताज़ा तरीन जानकारी, ताज़ा तरीन अपडेट्स पहुँचाने का, और इसी हवाले से हम घाटी में अपने विभिन्न जो हमारे संवाददाता हैं उनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं और आपको ताज़ा तरीन जो हालात हैं, ताज़ा तरीन जो जानकारी है श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के हवाले से, वो आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। इसी बीच हमारे साथ हमारे जम्मू के संवाददाता जावेद मेहराब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जावेद, आपका खैर मकदम है आज के इस खास ट्रांसमिशन में।
1: जी, बहुत शुक्रिया।
0: क्या हैं आपके पास जी ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं, कल दिन का जो अंत है, समापन है, वो कैसे हुआ और आज के दिन के हवाले से क्या अपेक्षाएं, क्या उम्मीदें और किस तरह के इंतजाम हैं?
1: जी, हमारी कोशिश रहती है कि आप तक हम नए अपडेट के साथ नई इंफॉर्मेशन यात्रियों तक भी पहुंचाएं और जो हमारी श्रोता है उन तक भी पहुंचाएं।
0: जी,
1: कोशिश ये होती है कि यात्रा का जो पूरा जो उसका रुझान है वो किस तरफ जा रहा है और कैसी यात्रा चल रही है, ये हमारी कोशिशें होती है। बाकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासन की तरफ से की गई कोशिशें हैं, और ये मिलकर ही सब कुछ चल रहा है, जिसमें लोगों का भी साथ है, संस्थाओं का भी साथ है और सभी लोग मिलकर इस यात्रा को अभी तक एक बड़ी कामयाबी की तरफ ले जा रहे हैं।
0: जी,
1: मैं आपको बताऊं कि पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा के इस पहले सप्ताह में श्रद्धालुओं का जो रुझान है वो जोश, जज्बे और हर्ष उल्लास के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ के बाजार, यहाँ के धार्मिक स्थल, यहाँ जम्मू के पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, यहाँ के खास शिव भक्ति के मंदिर, खासतौर पर तली रिवर फ्रंट रेलवे स्टेशन, शहर में साधुओं के लिए, साधवीज के लिए बनाए गए गीता भवन, राम मंदिर, तमाम स्थान श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं और यात्रा का ये समागम अलग ही आस्था, विश्वास और आपसी भाईचारे को दर्शा रहा है।
0: जी,
1: जुलाई से शुरू हुई तीर्थ यात्रा अब तक हजारों तीर्थ यात्री पवित्र बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन के लिए रवाना भी हुए हैं।

जहां आस्था के सफर में श्रद्धालुओं ने बालताल के मार्ग को चुना है, वहीं प्राचीन पहलगाम मार्ग की तरफ जाने की लालसा भी श्रद्धालुओं की प्रथम प्राथमिकता में रही है। पहलगाम के कठिन रास्ते में पहाड़ों और वादी के बीचों बीच शीर्षनाथ के दर्शन कठिन सफर की सारी थकान को दूर कर देती है। ये जो

0: साझा कर रहे हैं
1: जी।
0: पंचकर्णी के खूबसूरत बर्फ से ढके पहाड़, पहाड़ों के दरमियान एक दूसरे के साथ मिलकर बाबा बर्फानी की गुफा तक की तरफ पहली नजर एक अलग ही रूहानी अद्भुत सुकून देती है। कमी जो है वो मतलब जो माफ कीजिएगा कतारों में जो अनुशासित तरीके से बाबा बर्फानी के दर्शन मन को एक अलग ही एहसास खुशी हर्ष उल्लास प्रदान करते हैं। ये तीर्थ यात्रियों का कहना है कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर की प्रशासन और निजी संस्थाएं, यहाँ के लाखों लोग जो इस यात्रा से जुड़े हैं वो जो इस यात्रा को जिसमें सुरक्षा एजेंसियां बहुत से लोग जो जुड़े हैं इसको सुरक्षित होकर बाबा बर्फानी के द्वार पहुंचाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। एक बड़ा चैलेंज है जो हर वर्ष एक नई कामयाबी को रकम भी करता है, नई कामयाबी को दर्शाता भी है
1: जी।
0: तो मैं आपको बताऊं कि यात्रा पर निकले भक्तों में करीबन अभी तक का अगर हम कहें तो 55% पहलगाम मार्ग को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसीलिए आज हमने पहलगाम की इस खूबसूरत वादी के बारे में जो यात्री है, जो श्रद्धालु है, उनसे उन्होंने अपना अनुभव पेश किया तो हमें भी लगा कि प्राथमिकता जो है वो अभी तक की जो रही पहले सप्ताह की वो पहलगाम मार्ग रही है, क्योंकि बालटाल मार्ग की तुलना में पहलगाम मार्ग लंबा जरूर है लेकिन धार्मिक मान्यता, धार्मिक सौंदर्य और पारंपरिक जो अनुभव है उसके कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस खूबसूरत रास्ते को चुनते हैं। यात्रा के पहले सप्ताह में आंकड़े ये बता रहे हैं कि दोनों मार्गों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। जम्मू के आधार शिविर भगवती नगर से प्रतिदिन श्रद्धालुओं के नए जत्थे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हो रहे हैं। यात्रा मार्गों पर स्वच्छता, खाने पीने और जो और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं हैं उनको सुनिश्चित किया गया है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा को का अनुभव भी मिलता रहे। इस वर्ष बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर लोगों में गहरा उत्साह भी है जो यहाँ जम्मू में देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में यात्रा और गति पकड़ने के साथ दोनों मार्गों पर श्रद्धालुओं की संख्या और इजाफा होने की संभावना भी है
1: जी।
0: और आस्था के इस कठिन सफर में फिलहाल पहलगाम का मार्ग जो है श्रद्धालुओं की पहली पसंद रहा है। अभी तक दोनों मार्गों से हर दिन श्रद्धालुओं की हजारों संख्या बाबा बर्फानी के दर्शन पर रवाना हुई है और सुखद दर्शन कर वापस यहाँ जम्मू भी पहुंची है और सही सलामत घर की तरफ भी जो श्रद्धालु है वो लौट रहे हैं। जहाँ पहले दिन 4,822 तीर्थयात्री, दूसरे दिन 3,865, तीसरे दिन 4,812, चौथे दिन 6,721, पांचवें दिन 5,794, छठे दिन 8,815 और सातवें दिन 9,833 और आठवें दिन 8,150 तीर्थयात्री दोनों मार्गों की तरफ रवाना हुए हैं और अभी तक लगभग 1,00,000 के करीब श्रद्धालु जो है माना जा रहा है दर्शन भी कर लिए हैं। जो जम्मू कश्मीर के लोगों, यहाँ की प्रशासन, यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों और तैनात सुरक्षा जो कर्मी है जो 2400 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, निजी संस्था और लाखों लोगों के सहयोग, जहाँ जम्मू के जो लोग हैं वो भी बराबर इस यात्रा को बराबर सहयोग दे रहे हैं, वही घाटी के तमाम लोग, यहाँ स्थानीय लोगों जो है पूरी मतलब बनहाल के उस दर्रे को जब छोड़ते हैं तो वहां से शुरू होकर पूरे पहलगाम और बालटाल के मार्ग तक यहाँ का हर स्थानीय व्यक्ति जो है वो इस यात्रा को सपोर्ट भी करता है, इसे प्यार भी करता है और यहाँ पहुंचे लोगों को अपनी कुर्बानी देकर भी उनका साथ दे रहा है और तभी ये यात्रा इस कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। तो यही लग रहा है कल भी आपने आप तक ये जानकारी पहुंची होगी कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल फिर ट्रांजिट कैंप पटना जो भी गए
1: जी,
0: उन्होंने जो पहली प्राथमिकता से साथ तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने की कड़ी दिशा निर्देश दिए हैं। तो पवित्र श्री भोलेनाथ के दर्शन के लिए जो यात्रियों में हर्ष उल्लास है वो देखते ही बनता है और आज भी भगवती नगर यहाँ निवास स्थान से रवाना होने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 8,796 रही। बालटाल मार्ग की तरफ 3,450 तीर्थयात्री और जबकि पहलगाम की

0: प्राचीन मार्ग की तरफ 5,347 यात्री रवाना हुए। तीर्थ यात्री में पुरुषों की कुल संख्या 6,426 है, महिलाओं की 2,045 है, बच्चे यात्रा में 10 शामिल है, साधु 228 है, साधवी 56 है और विदेशी मूल के भी इस सप्ताह के दौरान 2 से 3 बार हमें आंकड़े मिले हैं। आज भी 34 श्रद्धालु तीर्थ यात्रा में शामिल है। तो घाटी की ओर ये श्रद्धालु 354 वाहनों में बाबा बर्धानी के द्वार की तरफ अग्रसर है। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ तीर्थ यात्रा जा रही है और तीर्थ यात्री भी यात्रा कर यहाँ पहुंच रहे हैं और अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, जहाँ रेलवे स्टेशन पर और निजी वाहनों में, उसके अलावा बसों में लोग खुश होके हर्षोल्लास के साथ और कठिन सफर की जो उनकी तकलीफें भी हैं उनको भूलकर वो वापस अपने घरों को भी लौट रहे हैं, जो एक बड़ी कामयाबी भी है। और पहले ये दिन जो है, जैसा कि हमने सारी जो डिटेल दिन की कितने लोग हैं, ये हमें देने का ये मकसद था कि किस तरीके से यात्रा बहुत बेहतरीन तरीके से अपने सफर की तरफ जा भी रही है और वहां से जो तीर्थ यात्री है दर्शन कर वापस लौट भी रहे।
1: जी, सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जो तीर्थ यात्री अभी तक जहाँ घाटी में आए, जिन्होंने दर्शन किए और जो अभी वापस जा रहे हैं, एक अच्छा मैसेज लेकर जा रहे हैं। और जो इस साल प्रशासन ने इंतज़ाम किए थे, जो कुछ यहाँ के लोकल्स ने इंतज़ाम किए थे, कुल मिलाकर वो उनसे खुश हैं और ये जानकर हमें बहुत खुशी होती है। और हमें खुशी होती है सुबह के ट्रांसमिशन में जो हम आगाज़ करते हैं एक पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ जो आप देते हैं हमें, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत शुक्रिया।
1: हमारे साथ हमारे जम्मू के संवाददाता जावेद मेहराब बात कर रहे थे और इनसे बात करके हमें ये मालूम चला है कि जो यात्रा अभी तक हुई है पिछले 7 दिनों में, आज यात्रा का 8वां दिन है, कुल मिलाकर एक अच्छा मैसेज गया है यात्रियों की तरफ से जो यात्रा करने के लिए आए और जो अभी घरों की जानिब अग्रसर हैं, उनकी तरफ से यही संदेश के इस साल का जो इंतज़ाम यहाँ की प्रशासन ने किया है, यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस, यहाँ का जो तिब्बी अमला है, या कुल मिलाकर जो भी लोग इस पूरी यात्रा में जुड़े हुए होते हैं, उनके प्रयासों से, उनकी कोशिशों से वो बेहद खुश हैं। और हमें ये सुनकर बहुत खुशी मिलती है कि हमारी जो कोशिशें हैं उन्हें आप लोग सराहते हैं और इसीलिए हम बार बार अपनी इस ट्रांसमिशन में कहते हैं कि आप आइए और हमें सेवा का मौका दीजिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं हमारी FM बालतली 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH OTT प्लेटफॉर्म वीव्स, और ये प्रसारण विशेष प्रसारण न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल पर भी आप तक पहुंच रहा है। आप हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं, अपना कोई मैसेज, अपना कोई सुझाव, अपनी कोई शिकायत हो सके तो हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर। और हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है स्टूडियोज़ का वो आप नोट करें 9596990954। इसी के साथ एक ईमेल आईडी भी हमने आपकी सुविधा के लिए रखा हुआ है जिस पर आप ईमेल के ज़रिए हम तक जुड़ सकते हैं, हम तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। ईमेल आईडी है akashvanibaltal@gmail.com। और हमारे संवाददाताओं से बात करने का सिलसिला

0: भी हम जारी रखे हुए हैं। जम्मू के बाद जब हम आगे आते हैं तो रामबन का इलाका आता है, जहां से नेशनल हाईवे की अपडेट्स और मौसम के हवाले से जो कुछ ताज़ा तरीन जानकारियाँ हैं वो हम तक पहुँचाते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन। तस्कीन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका खैर मकदम है तस्कीन साहब आज के इस विशेष प्रसारण में।
1: जी बहुत शुक्रिया।
0: जी तस्कीन साहब, आप वो रिपोर्टर हैं जो सबसे पहले हम तक सुबह जो कॉन्वॉय आती है उसमें कितने यात्री आते हैं, कितनी गाड़ियों से आते हैं, वो रिपोर्ट हम तक पहुंचाते हैं, और मौसम के हवाले से आपके पास जो कुछ भी जानकारी है और हाईवे का जो हाल रहने वाला है उसके हवाले से जो भी अपडेट्स हैं कृपया हमारे सुनने वालों तक वो पहुँचाएँ।
1: जी शुक्रिया। जो आज का जो नवा बैच हमारा है इस वक्त रामबन डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं। दोनों जो पहलगाम और बालतल के रास्ते जाने वाले श्री अमरनाथ यात्री है, तो पहले जो सुबह जम्मू से जब निकाला जाए तो बालतल, क्योंकि ये दूर वाला सफर है तो इसमें 173 गाड़ियां हैं, 3450 जो श्री अमरनाथ यात्री थे, तो अभी जो बालतल वाला कॉन्वॉय है ये बानहाल पहुंच चुका है। इस वक्त बानहाल के लाबर ग्राउंड में जहां पर इनका जो सुबह का नाश्ता वगैरह होता है, क्योंकि जम्मू से इनको कहीं रोका नहीं जाता है और जम्मू से डायरेक्ट इनको यहां तक एस्कॉर्ट करके लाया जाता है बानहाल के लाबर ग्राउंड पर, तो इस वक्त ये कॉन्वॉय यहाँ पहुंच चुकी है और इनका जो ब्रेकफास्ट वगैरह या जो सेहत वगैरह के मसाइल से कुछ लोग दो चार होते तो उनके लिए, क्योंकि पूरा इंतजाम है, पूरा सेटअप है इन जो लंगर साइट्स पर है लांबर और चंद्रकूट में, तो इसी तरह जो पहलगाम का ये अभी नाशरी टनल से होकर कास होकर नाशरी चनानी टनल से रामबन डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है। 181 गाड़ियां इस ये काफले में शामिल हैं जो पहलगाम के रास्ते पवित्र गुफा की तरफ जा रहे हैं, और 5346 जो श्री अमरनाथ यात्री से सवार हैं।
0: जी
1: और कुल मिलाकर आज चौथे दिन भी हम देख रहे हैं कि 8000 से जायद जो यात्री हर एक इसमें एक काफले में आ रहे हैं, और आज 354 गाड़ियों में दोनों काफलों में 8796 यात्री सवार हैं। तो जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बिल्कुल काबिल आमदरफ्त है, और मौसम जो है पिछले कई रोज से हम मुसलसल कह रहे हैं कि हल्की हल्की बारिशें जो इलाकों में हो रही तो उससे मौसम एक खुशगवार बना हुआ है, अच्छा मौसम है। खासकर सुबह के अवकात में जिस वह श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू से निकलकर कश्मीर घाटी की तरफ जाती है तो उनको ये पूरा जो हाईवे का स्ट्रेच होता है तो इसमें एक अच्छा खुशगवार मौसम का सामना रहता है। फिलहाल जो दोनों काफले हैं रामबन डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं, अभी आइंदा एक डेढ़ घंटे में जो पहला बालतल का है तो उसे कश्मीर की तरफ रवाना किया जाएगा आधे घंटे में, जबकि जो पहलगाम वाला काफला है तो आइंदा करीबन एक डेढ़ घंटे में ये कश्मीर की तरफ करीबन 11 बजे के आसपास इन्हें 10:30 और 11 के दरमियान इन्हें कश्मीर की तरफ पिछले जो कई रोज से चल रहा है तो उसी हिसाब से इनको निकाला जाएगा। इस दौरान जो जम्मू कश्मीर पुलिस मुसलसल जो यहाँ पर जो कैश गिर रहा है यात्रियों का या जो मोबाइल वगैरह का, दो मोबाइल पुलिस ने यहाँ पर लाबर ग्राउंड बानहाल में उठाए और बाद में उन्हें जो उनके सखी की मालिक थे वारसिन थे उन तक पहुंचाया, तो इसी तरह एक और रिपोर्ट है उसमें 1,40,000 का एक बैग जिसमें रुपये थे तो वो भी पुलिस ने कल उठाए बानहाल ग्राउंड में, तो शायद उसने एक अलग से एक पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट या प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाएगी, तो ये भी 1,40,000 का जो बैग पड़ा हुआ था रुपयों से भरा हुआ था ये भी जो श्री अमरनाथ यात्री से ही गिरा था तो उन तक ये पहुंचाया गया है। इस दौरान जो कल रात को हम बार बार कहते हैं कि 3 बजे के बाद किसी भी गाड़ी को बानहाल टनल से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होती कश्मीर की तरफ, न यात्रा गाड़ी को और न ही जो टूरिस्ट मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कश्मीर आ रहे हैं तो उनके लिए, और 2 बजे के बाद ये पाबंदी जो है चंद्रकूट में भी आयद होती है, तो उस दोनों जो काफले हैं जो चंद्रकूट और जो कल 3 बजे बाद या 2 बजे बाद चंद्रकूट और रामबन पहुंचे तो उन्हें भी करीबन आज करीबन 250 गाड़ियां शामिल थी और उनको भी कश्मीर की तरफ रवाना किया गया है। और बार बार यहां पर जो पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट किया जाता है, यात्रियों से कहा जाता है कि वो रजिस्ट्रेशन के बाद ही सफर करें और अपना जो शेड्यूल उनको दिया गया है, जो उनको टाइम दिया गया है किस दिन वो पवित्र गुफा की तरफ जाए उसी के हिसाब से आए, उसके बगैर जो भी आएगा उन्हें यहाँ से आगे सफर करने की इजाजत नहीं दी जाती। और अगर देखेंगे तो पिछले दिनों के मुकाबले में उसमें थोड़ा सा लोग अमल करना शुरू कर गए हैं और अब

0: अनरजिस्टर्ड जो यात्री जो बहुत ज्यादा पीक पहले दो चार दिन में बहुत ज्यादा जो दबाव रहा था उनका बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो उसमें किसी हद तक कमी आना शुरू हो गई है। जी
1: जी, सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जो यात्री आ रहे हैं बड़े बड़े काफिलों में, और जो ये सिलसिला है ये आगे भी आता रहेगा, और जो इंतज़ाम प्रशासन ने किए हैं उनसे भी यात्री खुश हैं। जो आपने खाने पीने की बात की, जो जो चिकित्सक स्वास्थ्य के हवाले से, चिकित्सा के हवाले से इंतज़ाम किए गए हैं, या कुल मिलाकर जो मौसम का आपने अपडेट दिया कि मौसम खुशगवार बना हुआ है और यात्री इस मौसम को बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मुफसल जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे रामबन के संवाददाता मोहम्मद तस्कीन बात कर रहे थे और अपडेट हमें दे रहे थे हाईवे के हवाले से, और जो नवा बैच अभी जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से घाटी की तरफ रवाना हुआ उसके हवाले से, और बहुत ही एक अच्छा प्रभाव होता है इस सब से, मन प्रसन्न होता है कि जो यात्री हैं वो बड़े बड़े काफिलों में खुशी के साथ बाबा भोले के जयकारे लगाते हुए आते हैं और हमें एक सेवा का मौका देते हैं। आप हमारा ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए। अगर आपकी कोई शिकायत है, आप प्रशासन तक अपना कोई सुझाव, अपनी कोई शिकायत पहुंचाना चाहते हैं, तो श्रीनगर के लिए प्रशासन तक पहुंचने का एक टोल फ्री नंबर हम आप तक साझा कर रहे हैं, कृपया नोट कर लीजिए। नंबर है 1800 1809। इसी तरह से अगर जम्मू में आपको कोई किस्म की असुविधा होती है तो उसके लिए हमारा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800 1809। जी हाँ, इन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स पर आप प्रशासन तक पहुंच सकते हैं, कोई भी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की असुविधा है, आपको कोई भी तकलीफ़ होती है, तो प्रशासन हमेशा आपकी उस असुविधा, उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए उपस्थित है।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं और हमारे संवाददाताओं से बात करने का सिलसिला और आप तक अपडेट्स पहुंचाने का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच हमारे साथ हमारे श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायको टेलीफोन लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं। इमरान, आपका खैर मकदम है आज के इस विशेष प्रसारण में।
1: जी, बहुत शुक्रिया।
0: आप तक आपसे ये सवाल पहले कि जो नौवां जत्था है उसके कब तक श्रीनगर पहुंचने के इम्कानात हैं और क्या कुछ इंतजामात हैं इस जत्थे के लिए और जो यात्री रवाना हो रहे हैं वो किस तरह का मैसेज दे रहे हैं?
1: देखिए, पहले दिन से ही जब से श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हुई है, जहां तक श्रीनगर के ट्रांजिट कैब का ताल्लुक है, यात्री यहां पे मुख्तलिफ अवकात में पहुंच रहे हैं, यानी कि जो डिफरेंट टाइमिंग्स है। कोई यात्री का जो जत्था है वो दिन के 12 बजे पहुंचता है, कोई दोपहर 3:30 बजे 4 बजे उनकी यहाँ पे आमद होती है, उनका अराइवल होता है। और इसी तरीके से कल भी यहाँ तकरीबन 1 बजे एक जत्था पहुंचा था और शाम को दोबारा से एक दो जत्थे यात्रियों के पहुंचे, जिनमें श्री अमरनाथ जी यात्रियों के जो मर्द, ख्वातीन और कुछ बच्चे भी मौजूद थे और कुछ साधु भी आए थे, साध्वीज भी आई थी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, और नाइट स्टे यहाँ पे उन्होंने किया। ओवरऑल अमरनाथ जी यात्रियों का जो यहाँ पे आना है उस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि बिलखसूस श्रीनगर के इस ट्रांजिट कैंप में उनका शानदार इस्तकबाल किया जाता है। और जब यात्रा शुरू हुई थी तो यात्रा शुरू होने के साथ ही हमने देखा था कि किस तरीके से श्रीनगर के बाईपास नौगांव में अमरनाथ जी यात्रियों का इस्तकबाल किया था, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ की सिविल सोसाइटी ने और यहाँ के मुख्तलिफ जो तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। और ओवरऑल जहां तक आज दिन का ताल्लुक है, आज रात भी यहां अमरनाथ जी यात्री ठहरे हैं। सुबह ही यात्रियों को तो

0: अर्ली इन द मॉर्निंग जो है रवाना किया जाता है अमरनाथ जी के दर्शन के लिए, और फिर बाद पूरे दिन में जो है यात्रियों की जो है आमद रहती ही है यहाँ पे, और कोई रजिस्ट्रेशन के लिए कोई दीगर चीजों के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी जो कतारें हैं उनकी जो लाइन्स है वो इस ट्रांजिट कैप में लगी रहती है।
1: जी
0: साथ साथ देखा जाए तो आज के दिन के हवाले से चूंकि मौसम भी काफी खुशगवार है, और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि अमरनाथ जी यात्रियों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। लेकिन आज के दिन के साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट कि कल शाम को यहाँ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने यहाँ विजिट किया ट्रांजिट कैंप श्रीनगर में,
1: जी
0: और उन्होंने श्रीनगर के इस ट्रांजिट कैंप में कायम अमरनाथ जी यात्रा कैंप और यहाँ जो यात्री निवास है उसका दौरा करके जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यात्रियों से मुलाकात भी की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की, और जो यहाँ मुतल्लिक अफसरान हैं
1: जी
0: उनको हिदायत दी कि हर्षु भगत को 24 घंटे बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए ताकि किसी भी यात्री को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े।
1: जी
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि रजिस्ट्रेशन या रिहाइश या खाने पीने, सेहत सफाई या पीने के पानी, बिजली, सिक्योरिटी, फायर सेफ्टी और दीगर बुनियादी सहूलियात में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, और ये तमाम मुतलिका महकमों की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि यात्रियों का कयाम जम्मू कश्मीर में महफूज, आरामदेह और रूहानी तजुर्बा बने। इसके अलावा जो अमरनाथ जी यात्री को लेके एलजी साहब का यहाँ कल शाम का जो विजिट था उन्होंने इसमें मजीद भी कहा कि गुजशत एक हफ्ते के अदद शुमार से जाहिर होता है कि इस साल पिछले बरक्स या गुज़िश्ता बरक्स के मुकाबले में ज्यादा तादाद में अकीदतमंद अमरनाथ यात्रा में शरीक हुए हैं, जो न सिर्फ मजहबी एतबार से खुश आइंद है बल्कि जम्मू कश्मीर की सियाहत और यहाँ की मकामी मईशत यानी कि यहाँ के टूरिज्म और
1: जी
0: यहाँ की जो लोकल इकॉनमी है उसके लिए भी एक पॉजिटिव इशारा है। एलजी ने कहा कि इनकी ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर के की जो मशहूर दस्तकारी है, हमारा जो हैंडलूम मसनूआत है, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम जिसको हम कहते हैं, वो
1: जी
0: पूरे मुल्क में या मुल्क भर में पहुंचे और हर यात्री अपने साथ यहाँ की कोई ना कोई मकामी मसनूआत लेकर जाए। और उन्होंने कहा कि इससे ना सिर्फ मकामी जो आर्टिजन्स हैं, जो कारीगर हैं, उनकी हौसला अफजाई होगी बल्कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मुहिम को भी फरोग मिलेगा जिसके
1: जी
0: जरिए यहाँ अकीदतमंद या यात्री और सकाफत और खुशहाली को एक साथ जोड़ा जा सकता है। और एलजी ने यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और जितने भी दीगर मुतलिका महकमे हैं उनकी बाहमी हम आहंगी को सराहा कि जो कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के उस पर उन्होंने उनको सराहते हुए डायरेक्शंस दी कि यात्रा के दौरान मौसर जो नज्म व नस्क है उसे शफाफ रजिस्ट्रेशन है, एक ट्रांसपेरेंट रजिस्ट्रेशन,
1: जी जी
0: उसको बर वक्त मालूम की फराहम की जाए। और चूंकि आपको याद होगा कि कुछ दिनों से कुछ यात्रियों की शिकायत थी रजिस्ट्रेशन को लेके, और उसी चीज का नोट्स लेते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल यहाँ श्रीनगर में तमाम ऑफिसर्स को हिदायत दी कि यात्रा के दौरान एक तो जो बड़ी तादाद में यात्रियों का एक हजूम जो नजर आता है उसमें एक नज्म व नस्क और रजिस्ट्रेशन को लेके एक ट्रांसपेरेंट और टाइमली जो इंफॉर्मेशन है वो फराहम की जाए और सिक्योरिटी पर खासी तवज्जो दी जाए। और उन्होंने कहा कि जो फेक रजिस्ट्रेशन में मुलविस अनासिर होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और ये भी उन्होंने डायरेक्शंस पास की है कि जाली रजिस्ट्रेशन में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: जी
0: और इस मौके पर उनके साथ डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मनदीप भंडारी, आईजीपी कश्मीर वी के ब्रिगेडियर जनरल कमिश्नर कश्मीर अंशल गर्ग, डीआईजी सेंट्रल कश्मीर राजू पांडे, एसएसपी श्रीनगर डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू, म्यूनिसिपल कमिश्नर श्रीनगर फजलुल हसीब के साथ साथ मुतअद्दी जो सीनियर ऑफिसरान थे वो भी एलजी साहब के साथ यहाँ मौजूद थे। और उनके विजिट के बाद भी हमने जब यात्रियों से बात की तो उन्हें उनके विजिट से काफी हौसला अफजाई हुई है, जिस तरीके से उन्होंने उनके साथ बात भी की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, बाद में जैसे मैंने कहा कि मीटिंग भी उन्होंने ऑफिसर्स के साथ ली है। सो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ये तो गवर्नमेंट सतह पर या एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिवली देख रहे थे कि गवर्नमेंट अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट मीटिंग्स हम देख रहे हैं कि आम लोग जो है यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो भी किसी ना किसी तरीके से इस यात्रा के सफल होने में, इस यात्रा को पीसफुली कंक्लूड तक पहुँचाने के लिए अपना हर तरीके से जो है हाथ बता रहे हैं।

0: इसमें ताउन पेश कर रहे हैं
1: जी
0: और यात्री भी इसमें जो है बड़ी खुश नजर आ रहे हैं। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है यात्रियों की अरेंजमेंट्स को लेके, चूंकि हम पहले दिन से ही अमरनाथ जी यात्रियों के साथ यहाँ पे बात कर रहे हैं, उनसे उनका फीडबैक ले रहे हैं यहाँ अरेंजमेंट्स को लेके, अरेंजमेंट्स के साथ साथ बाकी जो फैसिलिटीज ट्रांजिट कैंप के बाहर है उसको लेके,
1: जी
0: या कोई यात्री किसी शॉप पे जाता है, कहीं मार्केट में जाए या
1: जी
0: किसी और
1: इमरान
0: जगह पे जाए, तो उसको लेके भी वो बड़े जो है इत्मीनान का इजहार करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं।
1: जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त अभी बहुत कम है, हम आपसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए आपका शुक्रिया।
0: बहुत शुक्रिया।
1: हमारे साथ हमारे श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायकू थे।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की।

0: हैं श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट। यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहाँ बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती

0: क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
2: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिगबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्को ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। मान बरसा, NCR थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के दो दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि महफूज सरहद, खुशहाल सरहदी खत्ते और चौकस सोसाइटी मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रियासत के लिए यकसां सिविल कोड तैयार करने की खातिर 7 अरकान की एक कमेटी बनाई है। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो 4 महीने पहले अमरीका और इसराइल के हमलों में मारे गए थे। फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और मर्दों के क्रिकेट में चौथे टी20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। दोनों मुल्कों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथनी एल्बनीज के दरमियान बातचीत के दौरान दिफाई और बहरी सिक्योरिटी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के लिए अहम इकदामात का भी ऐलान किया है। कल मेलबर्न में तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबराह मीटिंग के अहम नतीजों में दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक के बारे में मुश्तरका ऐलानिया और बहरी सिक्योरिटी तावुन से मुतालिक खाका शामिल हैं। बातचीत के बाद एक मुश्तरका अखबारी बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बहरुल काहिल महज 2 समंदरों के संगम का मकाम नहीं, बल्कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी हम ख्याल जमहूरी मुल्कों की मुश्तरका उमंगों की अक्कासी होती है।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: बाद में मीडिया को जानकारी देते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि तरफेन ने भारत को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यूरेनियम की तवील मुद्दती सप्लाई के लिए इंतजामी समझौते को हतमी शक्ल दी है। उम्मीद है कि इस मुआहदे से माहौलियात के लिए साजगार भारत का तवानाई प्रोग्राम मुस्तहकम हो सकेगा और नेट जीरो के उसके मकासद को तकवीत मिलेगी।
2: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcomes today, adoption of the Joint Declaration on Defence and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration Roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
0: बाद में मेलबर्न में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्द से जल्द दुनिया की चोटी की 3 मईशतों में से एक बनने की भारत की ख्वाहिश ज्यादा तरक्की, ज्यादा कामयाबी के मंत्र पर मबनी है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र हैं। हम अधीर हैं, बेसब्र हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस कार्रवाई से दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाई अंजाम देने के लिए भारत के अंदरूनी मुल्क तैयार करदा दिफाई निजाम की सलाहियत और उसके मौसर होने का मुजाहिरा हुआ।
1: भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। हम आके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गुंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी नई बुलंदी पर पहुंच गई है और इसमें मुश्तरका अकदार अवाम से अवाम के मजबूत राबतों और मुख्तलिफ अहम शोबों में इश्तराक में वसत का अहम रोल है। वजीर आजम ने भारतीय बिरादरी के 10 लाख अफराद को बाहमी ताल्लुकात का एक अहम

पर आप हमें सुन रहे हैं, इसके साथ साथ डीटीएच और हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण जारी और सारी है। आपको बताना चाहेंगे कि कल यानी कि 9 जुलाई की शाम खत्म होते लगभग 28,000 के करीब जो तीर्थ यात्री आए थे, उन्होंने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए। खबरों से पहले हम वादी के विभिन्न इलाकों में जो हमारे संवाददाता हैं हमसे जुड़ते हैं, हम तक ताज़ा तरीन अपडेट्स पहुँचाते हैं, उनके साथ हमारी बातचीत जारी थी। और इसी हवाले से हमारे जो श्रीनगर के संवाददाता हैं इमरान नायकू, उन्होंने हम तक ये अपडेट पहुँचाया था कि जो यात्री बहुत सारे आते हैं इलीगल रजिस्ट्रेशन कार्ड अपने साथ लाते हैं, उनके पास कोई वैलिड ऐसा कार्ड नहीं होता है जिसके बिना पर उनको जो भगवती नगर जम्मू है वहाँ से श्रीनगर के ट्रांज़िट कैंप आने की इजाज़त दी जाए, या जो पांथा चौक में ट्रांज़िट कैंप है वहाँ से फिर आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाए। सभी यात्रीगणों से हमारा ये निवेदन रहेगा कि आप एक लीगल जो डॉक्यूमेंट है, लीगल जो रजिस्ट्रेशन होती है आपकी, उसको इख्तियार करें, क्योंकि आगे फिर आपको परेशानियाँ ना हो, आगे आपको कोई किस्म की रुकावट का सामना ना करना पड़े और आपका जो सफ़र है, आपकी जो यात्रा है, वो अच्छे से फिर मुकम्मल हो जाए और आप अपने घरों को वापस चले जाएं। इससे क्या होता है कि जो यात्री आते हैं उनमें बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं या बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं, उन्हें फिर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई यात्री आया और उसे वैलिड रजिस्ट्रेशन ना होने के बिना पर फिर आगे रास्ते रोका गया या उसे वापस भेजा गया तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमारा एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि आप एक प्रॉपर चैनल के ज़रिए आइए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, काउंटर्स अवेलेबल हैं थ्रू आउट द कंट्री और आपका इस्तकबाल है, आपके लिए, आपके वेलकम के लिए हम यहाँ पर हमेशा तत्पर हैं। फ़िलहाल हमारा ये विशेष प्रसारण जारी है, आप हमें सुनते रहिए। हम आगे अपने जो अनंतनाग के संवाददाता हैं एस तारिक, उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जो बालतर मार्ग है उस पर क्या कुछ चहल पहल है, क्या कुछ समा है, उसके बारे में उनसे बात करने की कोशिश करेंगे।

0: श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH के साथ साथ हमारा ये विशेष प्रसारण हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी उपलब्ध है। सुबह से अपडेट्स का सिलसिला जारी है और अपडेट्स देना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है, और आप तक जो ताज़ा तरीन अपडेट हम तक पहुंचा है या पहुंचाएंगे, वो पहुंचाएंगे हमारे जो अनंतनाग के संवाददाता है, जो हमारे प्राचीन मार्ग पहलगाम से जो मार्ग है वहाँ की जो इलाके की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं, अपडेट्स हैं, वो आप तक पहुँचाते हैं हमारे संवाददाता एस तारिक। तारिक साहब, आपका खैर मकदम है आज के इस विशेष प्रसारण में।
1: बहुत शुक्रिया इकबाल जी, सभी श्रोताओं को मेरा शुभ प्रभात। बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ जी यात्रा के भक्तों की आध्यात्मिक यात्रा सुखद और स्वस्थ तरीके से जारी है
0: जी।
1: आस्था और श्रद्धा से बनी इस यात्रा के दौरान सुबह 4 बजे उन्होंने आधार शिविर से 5,000 इजराइल यात्रियों का जत्था चंद्रवाड़ी पहुंच चुका है
0: जी,
1: जहाँ यात्री पंचकर्णी और आगे की यात्रा की जो तैयारियां हैं उसमें मसरूफ है। इसी के साथ ही तकरीबन इतनी ही संख्या में पहलगाम के निजी होटलों और हड्डों में मुकीम यात्री भी चंद्रवाड़ी पहुंच चुके हैं
0: जी।
1: यात्रा के सुचारू संचालन और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए दोपहर 12 बजे प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाता है ताकि यात्रा के संचालन में कोई विघ्न पैदा न हो। श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले सभी यात्रियों को एक विशेष पत्र यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान पत्र फराहम किया जाता है ताकि यात्रियों की जानकारी और इसकी नक हरकत पर नजर रखी जा सके
0: जी।
1: इस पत्र को अपने साथ रखना अनिवार्य है। यात्रियों का आगाज से ही यात्रियों को कुछ आवश्यक सलाहें दी जाती है, जैसे हम रेडियो से भी बताते हैं, आप भी बताते हैं, जिनमें अपने साथ पहचान पत्र, छतरी, लाठी, यात्रा के अनुकूल जूते और गीले डाले गर्म वस्त्र रखने की सलाह शामिल है। इसके अलावा यात्रियों से अपील की जाती है कि वो यात्रा मार्ग पर अपने जत्थे से अलग ना हो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है
0: जी,
1: ताकि उनकी यात्रा सुखद और सुरक्षित बनी रहे। इधर शेषनाग और पंचकर्णी में रात बसर करने वाले यात्रियों की पवित्र अमरनाथ गुफा की जानी पैदल यात्रा जारी
0: जी। जी तारिक साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? श्रोताओं, लगता है कि तारिक साहब के साथ हमारा जो राबिता है वो मुनकता हो गया है। हम एक बार फिर से उन्हें कॉल पर लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।

0: तारिक साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं जी। तारिक साहब आप कंटिन्यू कीजिए।
1: हाँ बिल्कुल, मेन लाइन ड्रॉप होने पर हम चेक करते हैं। इधर मैं शिशना की बात कर रहा था, तो शिशना को पंचतंत्र में रात बसर करने वाले यात्रियों की पवित्र अमरनाथ गुफा की जारी फाइनल यात्रा जारी, और वो जल्दी गुफा पहुंचकर दर्शन का सौभाग्य हासिल करेंगे। दूसरी जानब जम्मू के पर्वतीय नगर आधार शिवर से 8,796 यात्रियों पर मुश्तमिल नवा जत्था घाटी की जानब रवाना हो चुका है
0: जी।
1: ये जत्था दोपहर के करीब काजीगुल ट्रांजिट कैंप पहुंचेगा, जहां से बालतल और पहलगाम के लिए अलग अलग रास्तों के लिए वो रवाना कर दिए जाएंगे। इनमें पहलगाम के प्राचीन मार्ग के लिए 181 छोटी बड़ी गाड़ियों में 5,346 यात्री रवाना किए जाएंगे। इन यात्रियों में 4,038 पुरुष, 1,106 महिलाएं,

0: 51 साधु, 49 साधवी और एक बालक और एक ट्रांसजेंडर शामिल है। ये यात्रा दोपहर तक पहलगाम पहुंचकर रात के वक्त मनमन बेस कैंप में विश्राम करेंगे। यात्रा प्रशासन ने शिव भक्तों के लिए जरूरी से बढ़कर सभी सुविधाएं उपलब्ध रखी है। सभी कैंपों में खाने पीने, विश्राम और आवश्यक सेवाओं के बेहतरीन इंतजाम मौजूद है। इसके लिए इसके अलावा पूजा अर्चना की सामग्री से लेकर यात्रा के अनुकूल वस्त्र और दीगर आवश्यक वस्तुओं बीच यात्रियों के लिए दस्तियाब रखे हैं। अगर 57 दिनों की जारी रहने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो मौसला एहदादुशुमार के मुताबिक 3 जिले से अब तक यानी कि रात के वक्त तक 170,000 से जाहिर भगत बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। जबकि गुजश्ता रात दर्शन हासिल करने वाले यात्रियों की संख्या 28,300 से भी ज्यादा रही है। अब मौसम की जानकारी की तो बात करें, ये जो जरूरी है तो पहलगाम और इसके आसपास के इलाकों के साथ साथ पूरे यात्रा मार्ग पर मौसम खुशगवार है। हिमालय के पहाड़ी में खुली धूप देखी जा रही है। यात्रा पूरे रफ्तार और जोश व खरोश के साथ जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस वक्त पहलगाम से लेकर पवित्र गुफा तक तकरीबन 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जबकि दिन के वक्त ये बढ़कर 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। रात का कम से कम दर्जी हरारत इस तरीके से 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि हवा में नमी की मिकदार 88% रिकॉर्ड की जाएगी दिन के वक्त। इतनी महत्वपूर्ण यात्रा और इसके सुचारू संचालन पुल नजर रखने के लिए यात्रा अफसर, कैब डायरेक्टर और खुद आप उप राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी निगरानी कर रहे हैं। ये जो एलजी प्रशासन और यात्रा प्रशासन की निगरानी में यात्रा के हर पहलू पर नजर रखने के लिए एक हाई टेक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पहले ही स्थापित किया जा चुका है। ये सेंटर किसी भी मसले या शिकायत के पूरी समाधान में महत्वपूर्ण साबित होता है। हमें भी आशा है की बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले सभी जो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो और श्री अमरनाथ जी यात्रा इस तरह सुखद और सुरक्षित और सफलता के साथ जारी रहेगी।
1: जी, हमारी भी यही प्रार्थना रहेगी कि जो यात्रा है आपने हवाले जिसके हवाले से आपने बात की कि बहुत अच्छे से जाए, जो भी यात्री आए हमें उनके जो खिदमत है उनके काम आने का एक अवसर मिले। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जो आपने जानकारी दी मौसम के हवाले से या जो कुछ भी वहाँ पे इंतज़ाम सरकार द्वारा किए गए हैं उनके लिए भी सरकार का शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत शुक्रिया।
1: हमारे साथ हमारे अनंतनाग के संवाददाता एस तारिक बात कर रहे थे और जानकारी दे रहे जो प्राचीन मार्ग है पहलगाम का, वहाँ पे क्या कुछ इंतजाम हैं और क्या कुछ गहमा गहमी है यात्रा 2026 के हवाले से। और इसमें इन्होंने जो बताया कि जो प्रशासन है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये हुक्मनामा के लिए जारी किया है कि यात्रियों और यात्रा के दौरान किसी भी किस्म की किसी शिकायत की इतला नहीं आनी चाहिए, यानी कि जो कुछ इंतज़ाम किए गए हैं उनमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और आगे हम यही अपेक्षा यही उम्मीद रखेंगे कि जो यात्रा है वो ऐसे ही सुचारू रूप से जारी रहे और जारी रहेगा हमारा ये विशेष प्रसारण। आप हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द ही अपने जो गांदरबल के संवाददाता है रहीम रिजवान उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और गांदरबल में जो कुछ घटनाक्रम है उसके हवाले से आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे।

0: जी श्रोताओं, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे गांदरबल के संवाददाता रहीम रिजवान। रिजवान साहब, आपका खैर मकदम है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
0: बताइए, क्या कुछ हुआ कल यात्रा के सातवें दिन और आज दिन के हवाले से आपके पास क्या हैं ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स?
1: सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं, जिसके जरिए हम आप तक बालतल के पूरे क्षेत्र का वातावरण, मौसम की स्थिति एवं यहाँ के तापमान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाते हैं। श्रोताओं, बालतल से पवित्र गुफा तक मौसम सुहाना है। सुबह 3 बजे से ही ठंडी ठंडी एवं ताजा हवाएं चल रही हैं, जिसका भरपूर आनंद लेते हुए आज सुबह 4 बजे से बाबा बर्फानी के भक्तों का पवित्र गुफा जाने का सिलसिला शुरू हुआ तथा इस बीच 5,412 श्रद्धालु को बालतल बेस कैंप से तीर्थ यात्रा के लिए पवित्र गुफा की तरफ जाने की अनुमति दी गई। दुमेर एक्सेस

0: कंट्रोल गेट पर आरएफआईडी कार्ड हासिल करके जोश व जज्बे के साथ पवित्र गुफा जाने वाले इन श्रद्धालु में 4,276 पुरुष, 920 महिलाएं, 37 बालक बालिका, 28 साधु, 17 साधियां, 6 ट्रांसजेंडर एवं 128 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। जय बाबा बर्फानी का पवित्र नाथ करते हुए श्रद्धालु पैदल डांडी, पिट्ठू एवं गोडू पर सवार होकर गुफा की तरफ निकल पड़े। दुबेल से गुफा तक यात्रा ट्रैक की बार बार मरम्मत की जाती है एवं इस ट्रैक को कुशादा करके काबिल आमद रफ्त बनाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन RCC 122 का हर समय योगदान रहता है। उनके अधिकारी साल भर किस तरह कठिनाइयों का सामना करके इस ट्रैक की मरम्मत करते हैं ताकि तीर्थ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को चलने फिरने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इधर जहां बड़ी मात्रा में यात्री बालतल मुख्य मार्ग से पवित्र गुफा जाकर माथा टेकते हैं, वहीं आए रोज हजारों की तादाद में देर रात गए तक श्रद्धालु शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल बेस कैंप पहुंचते हैं। इस दौरान बीती रात 10 बजे तक 26,195 श्रद्धालु शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल पहुंचे। इन श्रद्धालु में 15,600 पुरुष, 9,800 महिलाएं, 296 बालक बालिका, 158 साधु, 38 साधियां एवं 303 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। यात्रियों को बहिफाजत गुफा पहुंचाने तथा दर्शन करके वापस बालतल पहुंचाने में जहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, वहीं प्रशासन ने यात्रा रूट के हर पड़ाव पर यात्रियों के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं भी उपलब्ध रखी हैं, जिसको लेकर यात्री बेहद संतुष्ट थे। इधर ट्रांजिट कैंप शादीपोरा के यात्रा इंचार्ज विभव तिकू के मुताबिक बीती शाम 10:30 बजे तक 34 छोटी बड़ी वाहनों में सवार 826 यात्री ट्रांजिट कैंप शादीपोरा में दाखिल हुए। उन यात्रियों में 90 पुरुष, 224 महिलाएं एवं 12 बालक बालिका शामिल थे। इनमें 307 यात्रियों ने पंजीकरण करके पवित्र सफर शुरू किया था, जबकि 236 श्रद्धालु बगैर RFID कार्ड्स के यहां पहुंचे। हालांकि 283 पंजीकरण किए बगैर ही यहां ट्रांजिट कैंप में दाखिल हुए। श्रोताओं, आपको ये भी बताते चलें कि पंजीकरण किए बगैर यात्री घाटी आगमन होते हैं ताकि वो पवित्र गुफा जाकर दर्शन करें। उनसे बार बार निवेदन की जाती है कि वो अपना पंजीकरण करें, इसके बाद ही उन्हें पवित्र गुफा जाने की अनुमति दी जाएगी। श्रोताओ, हम बार बार श्रद्धालुओं को ये सूचना देते हैं कि बालतल के पूरे क्षेत्र में सफाई का खास ख्याल रखें, गंदगी ना डालें एवं अपने साथ रेन कोट तथा अन्य जरूरी सामान साथ रखना ना भूलें। तो हम आशा करते हैं कि आपका ये पवित्र सफर संपूर्ण तरीके पर सफल हो सके।
1: जी रिजवान, आप हमें बताइए, जो पैदल पदयात्रा करते हैं यात्री और उसके बाद जब वो वापस बालतल पहुंचते हैं, तो वापसी पर जो उनके लिए इंतजाम होते हैं, उनमें क्या किसी किस्म की शिकायत आपको मिली या किसी भी छुटपुट घटना की आपके पास कोई इतला है?
0: नहीं, अभी तक कोई इतला नहीं है, क्योंकि जो भी पदयात्रा करते हैं बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक, जो भी यात्री जाते हैं कठिन रास्ता तय करके फिर वहां पहुंचते हैं, और हता कि सिर्फ बालतल में ही नहीं बल्कि दुमेल कंट्रोल गेट से लेके जो पंचतरणी है, काली मता है, लोअर केव है, अपर केव है, संगम टॉप है। संगम टॉप वो मकाम है जहाँ नूनवन बेस कैंप से और बालतल बेस कैंप से आने वाले यात्री
1: मिल जाते हैं आपस में। जी
0: मिलते हैं, मिलजुल कर वो जाकर पवित्र गुफा जाकर शिवलिंगम का दर्शन करते
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल।
0: और ये बहुत सारे मकामात जो हैं, इन पे बाज़ाब्ता तौर कैंप्स लगाए गए हैं, लंगर वाले वहाँ पे मौजूद हैं और दीगर सुविधाएं जो हैं वो जिला प्रशासन गांधरबल ने उपलब्ध रखी हैं, और इस दौरान यात्रियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता है, और उन्होंने अभी तक कोई शिकायत ऐसी दर्ज नहीं की है जिससे ये पता चले कि उन्हें जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। न सिर्फ बालतल बल्कि अगर हम शादीपोरा ट्रांजिट कैंप की बात करेंगे, वहां से लेके यात्रा ट्रैक जो है गुफा तक, तो जगह जगह हम चिकित्सा विभाग जो है उन्होंने अपने तबी मराकज कायम किए हैं। वहां न सिर्फ जम्मू कश्मीर UT के डॉक्टर्स बल्कि बाहर जो हमारे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल है, टाटा हॉस्पिटल है, बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनकी माहिर टीमें जो है मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनको यहाँ बुलाया गया है, और उनकी खदमात यहाँ पे जगह जगह मैसर रखी गई है, और वो डॉक्टर्स यहाँ तैनात किए गए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ तैनात रखा गया है, और उसके साथ साथ जिला के मुख्तलिफ विभागों के अधिकारी जो हैं उनको भी यहाँ पे मुतहरिक रखा गया है।
1: जी, इसका मतलब कि जो सारी तैयारी है वो बहुत अच्छे से है और सभी यात्री जो सारी सुविधा है उनका

0: लाभ उठा रहे हैं।
1: बिल्कुल, सुविधाएं जो हैं अच्छे तरीके से इनको प्रारंभ की जाती है। उससे हमें उस वक्त पता चला जब पंजीकरण के बगैर बहुत सारे यात्री यहाँ पहुंचे और इसके साथ साथ जो रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंचे हैं, जितनी एक्सपेक्टेशन जिला प्रशासन को थी उससे ज्यादा यात्री जो ही यहाँ पहुंचे, तो उस वक्त उस सूरत हाल को, उस सिचुएशन को जिला प्रशासन गांधरबल ने किस तरह टैकल किया और सभी यात्रियों के लिए तमाम तर सुविधाएं जो है वो उपलब्ध रखी है। किसी किस्म शिकायत का मौका नहीं मिला उनको, तो उन्होंने कोई शिकायत नहीं की सुविधाओं के हवाले से। तो उस वक्त हमें पता चला कि जिला प्रशासन गांधरबल ने किस तरह की तैयारियां की हैं ताकि यात्रा जो है वो खुश असलूबी से जारी रहे।
0: जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तफसीली रिपोर्ट के लिए। आपसे आगे भी बात होती रहेगी और आपसे अपडेट्स हासिल होती रहेंगी। हमारे साथ बात कर रहे थे हमारे गांधरबल के संवाददाता रहीम रिजवान साहब, और इन्होंने दो तीन अच्छी अच्छी बातें हमसे कहीं कि जो यात्री हैं उन्हें साफ़ सफाई रखने का, जो हम भी अपने इस ट्रांसमिशन के ज़रिए बार बार उनसे कहते रहते हैं कि साफ़ सफाई का आप इंतज़ाम रखिए, और साथ ही जो बालतल मार्ग है वहाँ पर भी जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी अपना काम बखूबी खुश असलूबी के साथ तनदेही के साथ कर रहे हैं, और इस इलाके को चाहे वो पवित्र गुफा से लेके बालतल हो या उससे नीचे वाला जो इलाका है उसको साफ़ रखने की वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। और हमारी भी यही आप सब से गुजारिश है कि साफ़ सफाई रखिए, क्योंकि आपके बाद भी आने वाले हैं मेहमान, आपके बाद भी आने वाले हैं यात्री, जो इस सब इसका जो ये है इस माहौल का एक हिस्सा बनने वाले हैं, वो भी देखना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या इंतज़ाम रखे गए हैं। हमें भी कोशिश करनी है कि आसपास के अपने इलाके को साफ़ रखना है, और ख़ासकर जो अपनी सेहत है उसका ख़ास ख्याल रखना है, खाने पीने का ख़ास ध्यान रखना है। जैसा कि रिजवान साहब अभी बता रहे थे कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो हमारी घाटी के डॉक्टर हों या बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें बाहर के स्टेट से मंगवाया गया है, मुद्दा और मकसद यही है कि जो यात्री हैं उनकी जो चिकित्सा है, उनका जो स्वास्थ्य है, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाए। फ़िलहाल हमारा यही कर्तव्य है कि आप तक ताज़ा तरीन अपडेट्स पहुंचाते रहें। आप हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने रहिए। हम जल्द लौटते हैं मज़ीद अपडेट्स के साथ।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मुशाहिद हुसैन। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि महफूज सरहदें, खुशहाली सरहदी खत्ते और एक खुशहाल मुआशरा एक साथ मिलकर ही मुल्क को महफूज बना सकते हैं। कौमी राजधानी नई दिल्ली में सरहदी रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के

0: सिन्हा ने श्रीनगर में पांथर चौक यात्री निवास में इंतजाम का जायजा लेते हुए कहा कि यात्रियों की आसानी के लिए तमाम तर सहूलियात मयसर रखी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मेहमान यात्रियों की बदौलत हमारी हैंडलूम और दस्तकारी मसनूआत को मुल्क के कोने कोने में पहुंचाया जाना चाहिए और इस तरह से हमारी मुनफरिद सकाफत हर श्रद्धालु के घर तक पहुँच जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हमारे दस्तकार अकीदे, तहजीब और खुशहाली को एक साथ बुन रहे हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि यात्रियों की बढ़ती हुई तादाद सियाहती शोबे के साथ साथ हमारे दस्तकारों के लिए भी एक नेक शगुन है और इसकी बदौलत हमारे यहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की मुहिम मजीद मजबूत होगी। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा अहसन तरीके से जारी है और आज भी बालतल और चंदनवाड़ी के बुनियादी कैंपों से कई हजार यात्री पवित्र गुफा की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। कल दिन भर भी 27,000 से ज्यादा यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए और इस तरह से कल शाम तक दर्शन करने वाले यात्रियों की मजमुई तादाद 1,60,000 से ज्यादा हो गई है। दरअसल जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से आज सुबह 8,800 श्रद्धालुओं पर मुश्तमिल नौवां काफिला भी वादी की तरफ रवाना किया गया है। आज सुबह 8 बजे तक मजीद 3,017 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पायदार सियाहत और माशी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में मिकदार की बजाय मैार पर मबनी सियाहत को फ़रोग देने पर जोर दिया है। SKICC श्रीनगर में पायदार सियाहत से मुतल्लिक एक कन्क्लेव से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने सियाहती मकामात के मास्टर प्लानों और वहाँ इमारतें तामीर करने के लिए वज़ा करदा सवाबित पर सख्ती से अमल पैरा रहने की अहमियत उजागर की है। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान और इसकी अमल आवरी बेहतर अंदाज की होनी चाहिए क्योंकि चुनिंदा मकामात पर इसकी अमल दरामद से अवामी एतमाद कमजोर पड़ जाता है। उन्होंने कहा कि सियासी मनसूबाबंदी दफातर की चार दीवारी में नहीं बल्कि उन लोगों से मशावरत के साथ तरतीब दी जानी चाहिए जो वहां नस्ल दर नस्ल रहते आए हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने सेंसस 2027 के सिलसिले में पहले मरहले के तहत मकानों को शुमार करने का मरहला अहसन तरीके पर और बरवक्त मुकम्मल करने के लिए इस अमल से जुड़े सभी जिला सेंसस अफसरों, शुमार कुनंदगान, सुपरवाइजरों और चार्ज अफसरों की सराहना की। इस सिलसिले में श्रीनगर में यूटी सतह की सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग की सदारत करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने मरदमशुमारी के अगले मरहल की सरगर्मियां भी इसी रफ्तार के साथ बरकरार रखने पर जोर दिया। उन्होंने सभी मुतलका हुकाम और आवाम को यह अमल अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए अपना भरपूर ताउन देने की अपील की। आज जम्मू कश्मीर में मुनक्कद होने वाले नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम का इम्तिहान मुनक्कद किया जा रहा है जिसमें करीब 6,600 तालिबे इल्म शिरकत करने वाले हैं। इस इम्तिहान के लिए यूटी भर में 97 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की ज़ेरी निगरानी मुनक्कद होने वाले इस इम्तिहान का मैार बरकरार रखने के लिए रहनुमा ज़वाबित वज़ह किए गए हैं। इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत इम्तिहान देने वाले तालिबे इल्म 1,068 नशस्तों के लिए मुकाबला करेंगे। इम्तिहान पास करने वाले तालिबे इल्मों को 9वीं जमात से आगे अगले 4 बरस तक सालाना 12,000 रुपये का मुशायरा दिया जाएगा। इखलाकियात से मुतल जम्मू कश्मीर असम्बली की कमेटी की एक मीटिंग चेयरमैन निज़ामुद्दीन भट्ट की सदारत में मुनक्कद हुई जिसमें कमेटी के सभी अरकान भी मौजूद थे। कमेटी ने कानून साज इदारों में अरकान की इदारा जाती रहनुमाई के लिए एक जामे मैार जवाबित अमल तरतीब देने पर भी तबादला ख्याल किया। दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.4 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज़। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं हमारे FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म वीव्स पर आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। अपनी कोई भी बात, अपना कोई भी सुझाव, अपनी कोई भी शिकायत हम तक या प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, SMS या WhatsApp के जरिए जो हम नंबर आपको देंगे उस पर मैसेज करना होगा या ईमेल पर हम तक अपनी बात पहुँचानी पड़ेगी। हेल्पलाइन नंबर हमारा है 9596-990-954। जी हाँ, याद रहे, इस पर आप कॉल ना करें, इस पर आप सिर्फ SMS या WhatsApp के ज़रिए हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और जहां तक रही ईमेल की बात, akashvanibaltal@gmail.com हमारा ईमेल ID है, इस पर भी आप हमसे राबिता कायम कर सकते हैं।
1: हम कोशिश करेंगे आप

बात को बाकी सुनने वालों तक या प्रशासन तक पहुंचाने की। इसके अलावा जो प्रशासन है, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उन्होंने श्रीनगर और जम्मू दोनों अजला के लिए अलग अलग टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स इजरा किए हैं यात्रा के हवाले से। उस पर भी आप अपनी कोई भी शिकायत, अपना कोई भी सुझाव उन तक पहुंचा सकते हैं। श्रीनगर के लिए टोल फ्री नंबर रहेगा 1800-1800-7199, यानी 1800-1800-7199। इसी तरह जम्मू डिवीज़न से अगर आप कोई भी बात करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो उसके लिए टोल फ्री नंबर रहेगा 1800-1800-7198। जी हाँ, 1800-1800-7198। श्रोताओं से हमारा बार बार यही निवेदन है कि आप एक प्रॉपर चैनल से आइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपना RFID कार्ड हासिल कीजिए। जैसा अभी हमने सुना, जो हमारे बानी गांधरबल के संवाददाता हैं रहीम रिजवान, उन्होंने ये बताया कि जो मुख्तलिफ ट्रांज़िट कैंप्स हैं वहाँ पे ये शिकायत आई है कि बहुत सारे जो यात्री हैं वो बग़ैर रजिस्ट्रेशन के आए हैं, या उनके पास एक वैलिड प्रूफ नहीं था, आईडी नहीं थी, या अगर कोई आईडी था भी वो एक इलीगल आईडी थी, जिसके बिना पर उनको फिर यात्रा करने की इजाज़त नहीं दी जाती। आप हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द लौटते हैं मज़ीद अपडेट्स के साथ।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
2: जय जय बाबा बर्फानी।
0: अमर

जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण जारी है और आप तक ताज़ा तरीन अपडेट्स पहुंचाने का सिलसिला भी जारी है। जैसा कि हमने खबरों में सुना, रिपोर्ट्स में सुना कि जो बहुत सारे यात्री इस साल रिकॉर्ड तोड़ यात्रा जो है वो अभी तक इन 8 दिनों में देखने को मिली। आज नौवां जो जत्था है, नौवां जो बैच है, वो भगवती नगर जम्मू के बेस कैंप से अभी घाटी की तरफ रवा दवा है। हाईवे पर उनकी जो चलने का सिलसिला है वो जारी है। रास्ते में वो रुकते हैं, भोजन करते हैं या किसी भी किस्म की उनको कोई भी चीज़ चाहिए होती है वो करते हैं। उसके बाद वो घाटी पहुंचते हैं, जो हमारा ट्रांजिट कैंप है पांथा चौक में, वहां पे उनकी फ्रिस्किंग होती है, चेकिंग होती है, जो ज़रूरी लवाजमात होते हैं वो कंप्लीट किए जाते हैं। उसके बाद उनको जो बेस कैंप्स होते हैं, पहलगाम का बेस कैंप या गांदरबल का, जो इन इलाकों में जो मुख्तलिफ बेस कैंप्स होते हैं उनमें उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। और सुनने में ये आया है कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड है और इस ओवरलोड के हवाले से जो प्रशासन है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी यात्री को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी यात्री को कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। हालांकि जो अपेक्षा है, जो उम्मीद है, उससे ज़्यादा जब यात्री आते हैं तो इस सिचुएशन में पैनिक होना लाजमी सी बात है। मगर हमारे जो प्रशासन है, हमारे जो अहलकार इस काम के साथ जुड़े हुए हैं, इस काम को कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो रहे हैं और हम स्वागत के लिए खड़े हैं, आपकी खिदमत के लिए खड़े हैं। और जो कश्मीरी है, कश्मीरियत है, उसका जो सबूत है, उसके जो सबूत हैं बार बार हमें देखने को मिलते हैं। अभी कुछ देर पहले हमारे एक संवाददाता जो हमारे मोहम्मद तस्कीन साहब है रामबन से, उन्होंने हम तक रिपोर्ट पहुंचाई थी कि कुछ एक यात्रियों के जैसे पैसे हो, कोई पर्स हो या मोबाइल फ़ोन हो या कोई भी कीमती सामान हो, वो गिर जाता है कहीं पे, उनको मिसप्लेस हो जाता है। उसको वापस करने और उसको उस यात्री तक पहुंचाने, उस इंसान तक पहुंचाने के लिए कोशिशें की जाती है, जो बहुत ही सराहनीय बात है क्योंकि इससे एक पॉजिटिव मैसेज जाता है बाहर कि जो हमारी मेहमान नवाजी है, जिसका हम ढिंडोरा पीटते रहते हैं, ये असल में हकीकत पर मबनी है। ये ऐसे ही नहीं है कि हम बातों बातों में कह देते हैं कि कश्मीर मेहमान नवाज है, कश्मीर के लोग मेहमान नवाजी में अव्वल नंबर पर हैं। ये इसका एक सबूत है जो हमारे यात्रीगण हमसे बात करते हैं और वो भी इस बात का बखूबी एतराफ़ करते हैं, वो भी इस बात को कबूल करते हैं कि जी, जो कश्मीरी लोग हैं उनकी कश्मीरियत, उनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। और हमारी सभी यात्रियों से भी यही गुजारिश है, निवेदन है कि वो अपने सामान का बहुत अच्छे से ख्याल रखें क्योंकि उनका सामान उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनके पैसे या उनका कोई भी कीमती सामान हो, मोबाइल फ़ोन वगैरह, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप अपने सामान का खुद ख्याल रखें। हो सकता है खुदा न खास्ता आपकी चीज़ कहीं ऐसी जगह पर गिर जाए जो फिर किसी को मिले ही ना, तो उसके बाद फिर उसके ज़िम्मेदार आप खुद होते हैं। मगर जो कश्मीरी लोग हैं उन्होंने बार बार इस बात का उदाहरण दिया है, इस बात की मिसाल दी है कि अगर आपके पैसे, आपका कोई भी कीमती सामान कहीं पे गिर जाता है तो वो यकीनी तौर पर उस इंसान को वापस मिल जाता है जो उसका हकदार हो। कल की तारीख में कुल मिलाकर हमने आपको इस ट्रांसमिशन के आगाज़ में बताया था कि 28,000 से ज़ायद यात्रियों ने कल पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए। और यहाँ पर बात एक बार फिर से सफाई सुथराई की आती है। ग्लोबल वार्मिंग का जो हम बार बार अपने प्रोग्राम्स में, बार बार अपने इस ट्रांसमिशन में जिक्र करते रहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारे असरात होते हैं हमारे मौसम पे, और उसकी ये वजह है कि जब लोगों की भीड़ होती है, जब लोग हद से ज़्यादा कचरा या हद से ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, तो उसकी एक वजह ये बनती है। और जो यहाँ का मौसम है, यहाँ का वातावरण है, उसमें काफ़ी हद तक असर पड़ता है, काफ़ी हद तक उसमें फ़र्क आता है। तो आपसे यही निवेदन कि साफ़ सफाई का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और जो चॉपर सर्विस के हवाले से अपडेट है वो ये है कि फ़िलहाल के लिए भी चॉपर सर्विस जो इस साल के लिए वो मुलतवी कर दी गई है। पंचतरनी से नीलग्राट के लिए जो चॉपर सर्विस चलती थी उसको नो फ्लाइंग जोन करार दिया गया है। हालांकि कुछ एक यात्रियों ने निवेदन किया था प्रशासन से कि उस सेवा को फिर से दोबारा शुरू किया जाए, चालू किया जाए।

है, क्योंकि कई एक यात्री ऐसे होते हैं जो ना ही पदयात्रा कर सकते हैं, ना ही घोड़ों पे, ना पालकी में जा सकते हैं, बुजुर्गी की हालत में होते हैं, या वो नहीं कर पाते, उनका मन नहीं होता वैसे करने का। मगर नो फ्लाइंग जोन किस वजह से करार दिया गया है उसकी हमारे पास कोई इतलात नहीं है, बट फिलहाल के लिए जो चॉपर सर्विस है वो मुलतवी है। और जो बाकी रास्ते हैं, जो पहलगाम का मार्ग है या गांधरबल का मार्ग है, बालतल का मार्ग, वहाँ से पदयात्रा, पालकी और घोड़ों पे जाने का जो सिलसिला है गुफा की जानिब, वो फ़िलहाल रवा दवा है। इसी तरह से रवा दवा रहेगा हमारा ये विशेष प्रसारण शाम के 6 बजे तक। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, भक्ति संगीत सुनते रहिए, और जैसे ही हमारे पास अपडेट्स आती हैं हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। फ़िलहाल दर्शन रिपोर्ट, जो हमारे पास लेटेस्ट दर्शन रिपोर्ट आया है, उसके मुताबिक अभी सुबह के 9 बजे तक 3017 जो यात्री हैं उन्होंने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए, जिनमें 2150 पुरुष, 739 महिलाएं, 24 बच्चे, 18 साधु और 86 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। और ये सिलसिला आगे भी जाता रहेगा, आगे जो भी हमारे पास अपडेट्स आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए और इन्जॉय करते जाइए भक्ति संगीत।

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल और DTH के साथ साथ आप हमारा ये विशेष प्रसारण हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन रहे हैं। हम तक ताज़ा तरीन जो दर्शन रिपोर्ट पहुंचा उसके मुताबिक अभी तक यानी कि दिन के 10 बजे तक कुल मिलाकर 5009 यात्रियों ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए थे, जिनमें 3380 पुरुष, 1429 महिलाएं, 44 बच्चे, 27 साधु, 3 साध्वी और 126 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। ये सिलसिला

रहेगा, ये आंकड़ा बढ़ता रहेगा, जैसे कि कल दिन के ख़त्म होते होते कुल मिलाकर 30,000 के करीब यात्रियों ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए। इस दौरान हमने आपसे पहले भी बताया कि साफ़ सफाई का आपको ख्याल रखना है, अपने और अपने साथियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, क्योंकि जब स्वास्थ्य है तभी आप ये यात्रा एक अच्छे अंदाज से, एक सुगम तरीके से अंजाम को पहुँचाएंगे। हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं और साथ है हमारा इस विशेष प्रसारण में आपका और हमारा। फिलहाल आप भक्ति संगीत सुनते रहिए।

श्रोताओं, आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आज एकादश का व्रत भी रखा जाता है। ये व्रत क्या है, इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। हिंदू धर्म में एकादश को बहुत ही पावन, बहुत ही बाबरकत और बहुत ही मुकद्दस माना जाता है। यह हर महीने यानी कि जो हिंदू महीना होता है, इसके दो पक्ष यानी कि दो हिस्से होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के मतलब जो चांद चढ़ने के पहले 15 दिन होते हैं उसको हिंदू मेथोडोलॉजी में शुक्ल पक्ष कहते हैं, और फिर जब चांद उतरता है या घटता है उसको हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। यानी कि ये जो एकादश का व्रत होता है, एकादश के रोज़े होते हैं एक किस्म के, उन्हें आज के दिन रखा जाता है। और इसमें जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कोई भी इसको इस व्रत को रख सकता है। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। व्रत से तो आपको पता ही है, हमारी सेहत को बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, हमारा जो फैट लॉस है वो हो सकता है। और एकादश के लफ्ज़, एकादश का जो लफ्ज़ है वो एकादश से निकला है, जिसके मानी है 11, क्योंकि ये तिथि चांद के महीने की 11वें दिन को आती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आज एकादश का 11वां चांद है। और हिंदू अकीदे के मुताबिक एकादश का व्रत खुसूसी भगवान विष्णु की प्रार्थना और उनकी इबादत की और उनकी खुशनुदी को हासिल करने के लिए रखा जाता है। ये दिन भगवान विष्णु को पूजना, उनको भोजन कराना, उनके कीर्तन या उनकी जो मुख्तलिफ मजहबी किताबें हैं, उनके स्क्रिप्ट्स हैं, उनका व्याख्यान करना, उनको पढ़ना, इसकी हमें तालीम देता है। इसके हवाले से आगे भी और बात होती रहेगी। आप हमारा ये विशिष्ट और विशेष प्रसारण सुनते रहिए।

0: जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच की डीटीएच हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म न्यूज़ ऑन एआईआर की जो आराधना चैनल है उस पर, और हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हमारा ये प्रसारण प्रसारित हो रहा है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स 1800-1807-199 जो कि श्रीनगर के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर रहेगा, इसके अलावा जम्मू के लिए 1800-1807-198 इस पर प्रशासन के साथ अपना कोई भी सुझाव, कोई भी शिकायत, कोई भी बात उन तक साझा कर सकते हैं। हमारे पास ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट आया हुआ है जिसके मुताबिक आज दिन के 10 बजे तक कुल मिलाकर 7962 यात्रियों ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए, जिनमें 5210 पुरुष, 2465 महिलाएं, 79 बच्चे, 42 साधु, 5 साध्वीज और 161 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। ये आंकड़ा आगे और भी बढ़ता रहेगा और इसके हवाले से हम आप तक और भी आगे जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। और अगर आप भी हम तक कोई जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, हमारे स्टूडियोज़ में कोई बात ऐसी हो जो आप बाकी सुनने वालों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हमारा स्टूडियोज़ का एक नंबर है जिस पे आप मैसेज या व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, वो है 9596-990-954। इसके अलावा एक ईमेल आईडी है जिस पर आप ईमेल करके भी अपनी कोई बात हम तक साझा कर सकते हैं। ईमेल आईडी है akashvanibaltal@gmail.com। तो हमारा ये विशेष प्रसारण जारी है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम जल्द ही मजीद अपडेट्स के साथ दोबारा से हाजिर होते हैं।

0: जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष प्रसारण यात्रा 2026 के सिलसिले के तहत, जो आप सुन रहे हैं FM बालतल के 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH के साथ साथ हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। हमारे एक साथी, हमारे एक नए साथी बल्कि यूँ कहें, अशफाक हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप तक जो ताज़ा तरीन अपडेट पहुँचा है हमारे पास, वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं।
1: जी आदाब और गुड मॉर्निंग श्रोताओं, शुक्रिया इकबाल साहब। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आगे भी रहेंगे। मैं हूं अशफाक और मैं अपने साथी, अपने उद्घोषक इकबाल कादरी के साथ आपकी खिदमत में हूँ और मेरी ओर से भी आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आप सभी को पता है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 से संबंधित हर महत्वपूर्ण समाचार और ताज़ा जानकारी हम निरंतर आप तक पहुंचाते रहे हैं और आगे भी पल पल की हर अपडेट से आपको आगाह कराते रहेंगे। यात्रा से जुड़ी जो भी नई और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास प्राप्त होगी उसे इसी प्रसारण के माध्यम से तत्काल आप तक पहुँचाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और आज की यात्रा के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अभी तक जो जानकारी हमारे पास आई है वो है 5009 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान किया है। इनमें 3380 पुरुष हैं, 1429 महिलाएं, 44 बच्चे, 27 साधु, 3 साध्वियां तथा 126 सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल हैं। फिलहाल भक्ति और श्रद्धा के इस पवित्र वातावरण को और अधिक भावपूर्ण बनाने के लिए आइए सुनते हैं एक मधुर भजन।
0: जी शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे श्रोता हमारा ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं उन तक ये अपडेट पहुंचा होगा। और एक और अपडेट हमारे पास अभी अभी आया है कि जो यात्री कल जम्मू के लिए रवाना हुए थे उन्होंने अभी कुछ देर पहले चंद्रकूट में नाश्ता करके वो अब जम्मू की तरफ अग्रसर हैं मुख्तलिफ गाड़ियों में। फिलहाल आप हमारा ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए, मजीद अपडेट्स अगर हम तक पहुंचती जैसे ही हम तक पहुंचती हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।

श्रोताओं, हमारे पास ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट आ चुका है जिसके मुताबिक आज दिन के 10:30 तक कुल मिलाकर 7,962 यात्रियों ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए। इनमें 5,210 पुरुष, 2,465 महिलाएं, 79 बच्चे, 42 साधु, 5 साध्वीज और 161 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। इनकी सुखद यात्रा के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं और जिस मकसद से, जिस उम्मीद से ये आए हैं, उनकी वो उम्मीदें पूरी हों। और हम बात कर रहे थे एकादश के व्रत की अहमियत और इसकी रूहानियत की के मुतालिक। इसको कैसे शुरू किया जाता है उसके बारे में हम आपको चंद इतलात देना चाहेंगे। सुबह सवेरे नहा धोकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। उसके बाद अकीदतमंद या ये व्रत रखने वाला बंदा अनाज और चावल से परहेज़ करते हैं पूरा दिन, यानी कि कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं खाते। हालांकि कुछ लोग तो दिन में फल, दूध या खुश्क मेवा ज्यादा, जैसे ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू वगैरह का इस्तेमाल तो करते हैं, मगर ज़्यादातर लोग आम तौर पे पूरे भूखे रहते हैं। वो सिर्फ दिन में पानी का सेवन करते हैं। दिन भर इनका मामूल यही होता है कि वो इबादत करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जापते हैं और अच्छे आमाल, अच्छी नियति अपनाने की खुद को तरगीब देते हैं, खुद को सलाह देते हैं। और इसके अगले दिन यानी द्वादश को व्रत का इख्तिताम किया जाता है, व्रत को तोड़ा जाता है, जिसे पारण कहा जाता है। इस व्रत तोड़ने को हिंदू मेथोडोलॉजी में पारण कहा जाता है। योगिनी एकादश की अहमियत, इसके 8 मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली

एकादशी को योगिनी एकादश कहा जाता है। हिंदू अकीदे के मुताबिक इस व्रत को रखने से इंसान को रूहानी सुकून, जहनी पाकिजगी और नेकी के रास्ते पर चलने की तरगीब मिलती है, और यही तरगीब हर एक मज़हब, हर एक धर्म, हर एक अच्छा इंसान हमें देता है, और यही चीज़ें हमें बिला मज़हब व मिल्लत खुद में उतारनी होती हैं कि हमें इस दुनिया में अच्छे कर्मों के लिए भेजा गया है, हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए भेजा गया है, हमें एक दूसरे का दुख दर्द समझने और उन दुखों दर्दों को आपस में बांटने और उनका हल ढूंढने के लिए भेजा गया है। यही मज़हब, हर एक मज़हब हमें तालीम देता है, हर एक मज़हबी किताब हमें तालीम देती है, और इन तालीमात पर हमें चलने की ज़रूरत है ताकि हमारा जीवन सफल हो।

श्री अमरनाथ जी, यात्रा 2026 के हवाले से विशेष प्रसारण के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.7 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से सुन रहे हैं। श्री अमरनाथ जी, यात्रा 2026 के संबंधित हर महत्वपूर्ण समाचार और ताज़ा जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और आज की यात्रा की जो ताज़ा जानकारी यानी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जो हम तक इतला है, उसके मुताबिक अभी तक 7,962 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। इनमें 5,210 पुरुष, 2,465 महिलाएं, 89 बच्चे, 42 साधु और 5 साध्वियां तथा 161 सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं। हम आप तक और भी अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल भक्ति और श्रद्धा के इस पवित्र वातावरण को और अधिक भावपूर्ण बनाने के लिए एक और भजन, मधुर भजन सुनते हैं।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
2: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल डीटीएच के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। हमने आप तक एक हेल्पलाइन नंबर पहुंचाया था जिस पर आप अपना कोई भी सुझाव, अपनी कोई भी शिकायत, कोई भी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। वो हम आपके लिए एक बार फिर से दोहराते हैं। लेट जो लिसनर्स हैं हमारे, उनकी जानकारी के लिए टेलीफोन नंबर है 9596-990-954। इस पर आप व्हाट्सएप या एसएमएस के ज़रिए हम तक अपना कोई सुझाव, शिकायत या कोई भी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आकाशवाणी बालतल @gmail.com हमारा ईमेल आईडी है, इस पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। श्रीनगर और जम्मू अजला के लिए अलग अलग से 2 हेल्पलाइन नंबर्स, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स जो प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं, आप वो भी नोट करते जाएं। श्रीनगर के लिए नंबर है 1800-180-7199। इसी तरह से जम्मू के लिए टेलीफोन नंबर है टोल फ्री 1800-180-7198। जी हाँ, जिस तरह से हमने अभी प्रोमो में सुना कि आपको अमरनाथ यात्रा पर आने से पहले जो है दौड़ने के कई मरहले करने चाहिए, क्योंकि सुबह दौड़ना आपकी सेहत के लिए ओवरऑल अच्छा तो है ही, लेकिन अमरनाथ यात्रा पर आने के लिए और अमरनाथ यात्रा करने के लिए ये आपको बहुत मदद दे सकता है, क्योंकि आपकी मांसपेशियां खुल जाएंगी और आपको ज़्यादा चलने, ज़्यादा दौड़ने और ज़्यादा ऊंचाई चढ़ने में इससे मदद मिल सकती है। तो जो ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट हम तक पहुँचा था दिन के 12 बजे तक का, उसके मुताबिक आज दिन के 12 बजे तक कुल मिलाकर 11,022 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए थे, जिनमें 7,185 पुरुष, 3,468 महिलाएं, 120 बच्चे, 60 साधु, 8 साध्वियां और 181 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। जैसी इस आंकड़े में वृद्धि आती है, इसमें इजाफा होता है, हम आप तक ताज़ा तरीन अपडेट्स और ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप भक्ति संगीत को एंजॉय करते रहिए और हमारा ये विशेष प्रसारण भी सुनते रहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
2: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। FM पहलगाम 100.1 MHz पर, FM बालतल 103.7 MHz पर। जी हाँ, मैं हूँ शाही नरेशी, आपकी सेवा में उपस्थित। ये विशेष प्रसारण जो है अभी से लेकर आप 6 बजे तक मेरे साथ सुनेंगे। मैं 6 बजे तक आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगी। ये विशेष प्रसारण आप DTH की आराधना सरस न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप और प्रसाद भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुनते हैं। जी हाँ, सभी तीर्थ यात्रियों के लिए यही कहना चाहेंगे, हमारी मनोकामना है सब तीर्थ यात्रियों की यात्रा कुशल और मंगलमय हो।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।
2: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम की संग। जी हाँ श्रोताओं,

11 बजे तक जो हमारे पास दर्शन अपडेट आया है वो आपके साथ साझा करना चाहेंगे। 11 बजे तक 11,022 तीर्थ यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त किए हैं। पुरुषों की संख्या रही है 7,185, महिलाएं 3,468, बालक 120, साधु 60, साध्वीज 8 और सुरक्षा कर्मचारी 181। ऐसे अगर हम कहेंगे बहुत ही अच्छा स्कोर रहा है, यानी आंकड़ा रहा है दर्शन का जो अभी तक यानी 11 बजे का है, 11,022। तो हमारे पास ये भी अपडेट आया है कि यात्रा अच्छे से जारी है। दोनों मार्गों की बात करें तो दोनों मार्गों से सुचारू रूप से यात्रा जारी है। यात्री जो है प्रशासन द्वारा सुविधाओं का लाभ उठाते हुए कड़ी सुरक्षा के साथ यात्रा जारी रखे हुए हैं।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। जी हाँ, एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर डीटीएच की आराधना सर्विस एवं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं और इसके बगैर भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। शो तो आपको बता दे, इस साल जो 2026 में अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई और ये अगस्त तक चलती रहेगी। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने इस बार भी और इस साल भी बेहतर सुविधाओं का प्रबंध किया है, जिसमें RFID, मेडिकल कैंप्स और लंगर शामिल हैं। लेकिन इस सब के पीछे कश्मीरी लोगों का योगदान अनमोल है। पहलगाम और बालतल के रास्ते पर लोकल लोग यात्रियों का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। श्रोताओं, अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि कश्मीर के लोगों के दिल का सफ़र है। ये वो किस्सा है जो सदियों से चला आ रहा है, जिसमें कश्मीरी लोग अपनी मेज़बानी, समर्पण और प्यार से यात्रियों का स्वागत करते हैं। ये यात्रा बताती है कि धर्म और इंसानियत के बीच कोई दीवार नहीं। तो जब भी आप अमरनाथ जी यात्रा के बारे में सोचें, याद रखें ये यात्रा सिर्फ बाबा बर्फानी के दर्शन का मौका नहीं बल्कि कश्मीर के लोगों के भाईचारे और अपनापन की कहानी भी है।

0: मिट्टी का सेवन करेंगी, जिन्हें संसार के प्राणी सरस्वती के रूप में जानेंगे। फिर इन प्रकृति देवी से जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी, वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। इसके बाद काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी, वो मेरे अंश रुद्रदेव को प्राप्त होंगी।
1: हे ब्राह्मण, भगवान सदाशिव की इच्छा के अनुसार आप वाणी की शक्ति वाग देवी के साथ स्वर और ध्वनि को आकार देंगे।
0: हे ब्रह्मा, यही आदि ध्वनि नाद ब्रह्म कहलाएगी,
1: जैसी आपकी इच्छा दिवाली।

हे शौनक, उसी तरह असत्य के बिना सत्य का कोई महत्व नहीं, और जीवन के अस्तित्व के लिए भी मृत्यु का होना अनिवार्य है। यही संपूर्ण सृष्टि के संचालन का रहस्य है। इसी सत्य को वेदों में इस तरह कहा गया है।

0: मृत्युर्मामृतं गमय।
1: अर्थात हे परमेश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो।
2: हे शौनक, इस तरह भक्त वत्सल भगवान शंभु ने ब्रह्मा और विष्णु को संसार के संचालन का दायित्व सौंप दिया और देखते ही देखते अंतर्धान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान आरंभ हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव काम और मोक्ष दोनों ही देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का।
1: हे महामुनि, ये लिंग स्वरूप शिव कहां कहां विराजमान हैं और इनकी महिमा क्या है?
2: हे शौनक, शिव पुराण में वर्णित रुद्र संहिता के प्रसंग के अनुसार देवर्षि नारद ने जिन शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन किया और पृथ्वी की परिक्रमा की, वो

0: हे सूत जी, कैलाशपति शंकर के लिंग रूप के बारे में विस्तार से जानकर अत्यंत सुख मिला। कृपा पूर्वक बताएं कि उनके अन्य रूपों का आधार क्या है।
1: महामुनि शौनक, आपका ये प्रश्न सहज और स्वाभाविक है। इसके संबंध में अगली बार विस्तार से बताएंगे।
2: श्रोताओं, शिव पुराण के रुद्र संहिता के आरंभिक अध्यायों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के महत्व को बताया गया था। अगले प्रकरण में मनु तथा शत्रुपा और सती और शिव की महत्ता को बताया जाएगा।

0: आपके साथ हम साझा करते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। कुछ ही क्षणों में आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे, पहले उर्दू, फिर अंग्रेजी और उसके बाद फौरन हिंदी में। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वो न्यूजीलैंड के अपने हममनसब से बातचीत करेंगे। मरकज ने ज्यादा अल्कोहल वाली दवाओं के जाब्ते बनाने के लिए नशीली अशिया के जाब्तों में तरमीम की है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जिनसी तशद्दुद से मुतालिक तनाजे की सख्ती से मजम्मत की है और इसे जंग और दहशतगर्दी का आलाकार करार दिया है। IMD ने आज उत्तराखंड में शदीद से बहुत ज्यादा शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और खवातीन के क्रिकेट में आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीखी वन ऑफ टेस्ट मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीरे आजम नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के 2 दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच गए हैं। जनाब मोदी न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे। दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे, जिसमें गुज़श्ता 2 साल में खासतौर पर तिजारत, कॉमर्स और दिफा के शोबे में नुमाया पेशरफ्त हुई है। जनाब मोदी का न्यूजीलैंड का यह दौरा पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा है। जनाब मोदी मुमताज कारोबारी और खेलों से वाबस्ता शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम अपने इस दौरे में भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से भी खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का अपना तारीखी और इंतहाई अहम दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। इस तरह उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया जामे दिफाई शराकत दारी के लिए मुस्तकबिल की राह हमवार कर दी है। आला इख्तियाराती दफ्तरों से लेकर मशहूर जगह तक के इस दौरे से दोनों बड़े जमहूरी मुल्कों के दरमियान सिफारती, इक्तसादी और सलामती से मुतालिक ताल्लुकात को फरोग हासिल होगा। वजीर आजम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथनी एल्बनीज की इस बातचीत से जामे इक्तसादी ताउन के मुआहदे CECA से मुतालिक मुजाकरात की रफ्तार में तेजी आएगी। इस दो तरफा बातचीत में माहौल के लिए साजगार तवानाई पर खास तवज्जो दी गई है, जिसके तहत भारत को ऑस्ट्रेलिया की तवील मुद्दती यूरेनियम सप्लाई के लिए बंदोबस्त को कतई शक्ल दी गई है। इस तरह 2014 के बुनियादी फ्रेमवर्क का इयादा किया गया है। बातचीत में दिफाई सलामती पर भी खासतौर पर तवज्जो मरकूज की गई, जैसा कि दोनों समंदरी मुल्कों ने दिफा और सलामती से मुतालिक तावुन नीज एक आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के लिए समंदरी सलामती के इश्तराक के खाके को भी मुश्तरका ऐलानिये की शक्ल में मंजूर किया। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे ताल्लुकात बरकरार रखते हुए वजीर आजम ने अपोजिशन के रहनुमा एंगस टेलर से भी मुलाकात की। उन्होंने जनाब मोदी को अपने मुल्क का एक सच्चा दोस्त करार दिया। उन्होंने बैन अल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद और पुरअमन यूरेनियम बरामदात जैसे बुनियादी इकदाम की हिमायत की। ये दौरा मशहूर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेलों की सिफारतकारी की शक्ल में इख्तिताम पजीर हुआ। दोनों रहनुमाओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेलकूद से मुतालिक इश्तराक के खाके का भी बाकायदा आगाज किया, जिससे खेलकूद और बुनियादी ढांचे को फरोग हासिल होगा। जैसा कि भारत 2030 के दौलत मुश्तरका खेलों और ऑस्ट्रेलिया 2032 के ब्रिस्बेन ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है। तफसील हमारी नामनिकार से।
2: इस यादगार सरकारी दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात की वजह से महज सिफारती सरगर्मियों ने मरबूत और कसीर सतही इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसके तहत सनती कारोबार में इजाफा हुआ है, आला टेक्नोलॉजी वाले दिफाई खाकों को बेहतर शक्ल मिली है, ख्वाह वो न्यूक्लियाई सप्लाई का बंदोबस्त हो या MCG में खेलकूद की सिफारत हो, दोनों मुल्कों ने भारत बहरुल काहिल इस्तेकाम के लिए एक राहदारी मुकर्रर कर दी है। अपने दौरे के इख्तिताम के बाद अपने 3 मुल्कों के दौरे के अगले तारीखी मरहले के तहत वजीर आजम बराहरा

0: न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड पहुंच गए हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: मरकजी हुकूमत ने नशीली अशिया के 1945 के जब्तों में तरमीम की है, जिसका मकसद ज्यादा अल्कोहल पर मुश्तमिल नशीली दवाओं के जब्तों को मुस्तहकम बनाना है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने एथाइल अल्कोहल पर मुश्तमिल दवाओं के लिए लाइसेंस की ज़रूरत में मौजूदा इस्तिस्ना को ख़त्म कर दिया है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 12% से ज़्यादा एथाइल अल्कोहल पर मुश्तमिल वो दवाएँ जिनकी मकदार 30 मिलीलीटर से ज़्यादा है, अब इन पर शेड्यूल के तहत कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस तरह की मसनूआत के लिए अब नशीली अशिया और कॉस्मेटिक्स कानून 1940 के तहत लाइसेंस की ज़रूरत होगी। भारत ने महाजराई और लड़ाई से वाबस्ता जिनसी तशद्दुद की सख्त मजम्मत की है और उसे मुख्तलिफ तबकों पर ज्यादती, इख्तलाफ राय को दबाने और लोगों के खिलाफ जुल्म व ज्यादती के लिए जंग, दहशतगर्दी, ईजा रसानी और सियासी जबर का वसीला करार दिया है। महाजराई से वाबस्ता जिनसी तशद्दुद के बारे में अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के खुले मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि इस तरह का तशद्दुद बेरोक टोक जारी है और भारत इस तरह की वहशियाना हरकतों की सख्त मजम्मत करता है। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2025 में तस्दीक शुदा वाकयात में नुमाया इजाफा इस बात की निशानदेही करता है कि इज्तिमाई कार्रवाई की फौरी जरूरत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर प्रहलाद जोशी ने आज कहा है कि साफ सुथरी तवानाई की मुल्क की बिजली की मांग का 50% से ज्यादा हिस्सा पूरा कर दिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जोशी ने कहा कि काबिल तजदीद वसाइल से इस महीने की 6 तारीख को बिजली की सप्लाई का 52% हिस्सा हासिल हुआ है। वजीर मौसूफ ने इसे भारत के माहौल के लिए साजगार तवानाई के ईको निज़ाम की बढ़ती हुई ताकत और इन्हिसार का सबूत करार दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत बिजली के मैदान में रफ्तार और अज़्म के साथ लगातार तरक्की कर रहा है। नीति आयोग की रुकन डॉक्टर जोरामानिया ने यूनिसेफ भारत नुमाइंदा सिंथिया मैकैफ्री और उनके वफद के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की, जिसका मकसद बच्चों पर मरकूज तरक्की, स्कूल तालीम और इंसानी तरक्की से मुतालिक इश्तराक को तकवीत देना था। नीति आयोग के मुताबिक बातचीत में महफूज और सबकी शमूलियत वाली आमोजिश, बुनियादी खानदगी और असातिज़ा की तालीम, तलबा की खुशहाली, साइबर हिफाजत और खासतौर पर उमंगों वाले जिलों और ब्लॉकों में डिजिटल सलामती पर तवज्जो मरकूज की गई। मशहद में इमाम रजा बारगाह में ईरान के साबिक रहबरे आला आयतुल्ला अली खामनाई की तदफीन हुई और इसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफ़ा खामनाई ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने ऐलान किया है कि इस साल नवंबर के आखिर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे, जो 2006 के बाद से पहले इंतखाबात होंगे। सदर अब्बास ने एक सदारती फरमान जारी करते हुए 28 नवंबर 2026 बरोज हफ्ता को इंतखाबात की तारीख मुकर्रर की है। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में जम्मू कश्मीर ने मरदम शुमारी 2027 के पहले मरहले यानी मकानात की फहरसाजी का अमल 100% डिजिटल डाटा जमा करने के साथ कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। भारत के महकमे मौसमियात ने आज उत्तराखंड में शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने कहा है कि यहाँ अलग अलग जगहों पर इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। उधर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। फीफा आलमी कप में अमेरिका के बोस्टन में पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इधर आज रात दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम आज उस वक्त तारीख रकम करेगी जब वो लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलेगी। लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाने वाला खवातीन का ये अब तक का पहला टेस्ट मैच होगा। ये इंग्लैंड और भारत खवातीन क्रिकेट टीम के दरमियान 16वां टेस्ट मैच होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दूरदराज दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वो न्यूजीलैंड के अपने हममनसब से बातचीत करेंगे। मरकज ने ज्यादा अल्कोहल वाली दवाओं के जाब्ते बनाने के लिए नशीली अशिया के जाब्तों में तरमीम की है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जिनसी तशद्दुद से मुतालिक तनाज़े की सख्ती से मजम्मत की है और इसे जंग और दहशतगर्दी का आलायकार करार दिया है। फीफा आलमी कप में दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा और

0: Belgium in second quarter-final tonight. And in women's cricket, India to take on England in historic one-off test match at Lord's Cricket Ground in London this evening. The details of these stories and more log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की। इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना

0: करना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इजरायल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
1: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
0: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश चोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा

0: इलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
1: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल हैं। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की भावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में

0: धार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ

0: और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ
1: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आप समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। इसके अलावा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी हम आपके लिए उपस्थित रहते हैं और आपको अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे रहते हैं और अपडेट आपको करेंगे 1 बजे तक। जो हमारे पास अपडेट आया है वो आपके साथ साझा करना चाहेंगे। जी हाँ श्रोताओं, 16,833 तीर्थ यात्रियों ने 1 बजे तक बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त किए हैं। पुरुषों की संख्या रही है 10,925, महिलाएं 5,331, बालक 223, साधु 105, साध्वी 15 और सुरक्षा कर्मचारी 234। इसलिए टोटल जो है कुल मिलाकर संख्या रही है 16,833 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन पाए हैं।

0: 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। जी हाँ श्रोताओं, क्षण क्षण के अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने में यही हमारा प्रयास रहता है। हम प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक आपके साथ जुड़े रहते हैं और आपके लिए अपडेट्स जो है आपके साथ साझा करते हैं, और इसी कार्य में हमारे रिपोर्टर्स भी होते हैं, दिन भर रिपोर्टिंग करके, रिपोर्ट हासिल करके हमारे साथ साझा करते हैं। और इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए जम्मू भगवती नगर से हमारे जो संवाददाता हैं जावेद मेहराब साहब, वो जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ अपडेट है इनके पास। जी जावेद।
1: जी, पवित्र श्री अमरनाथ जी का पर्व जम्मू में लगातार उसी हर्षोल्लास के साथ जारी है, और हमारी कोशिश है कि हम आप तक जो तीर्थयात्री हैं वो किस तरह से यहाँ अपनी इस प्रक्रियाओं में जुड़े हैं, किस तरह से खाना पीना, उनका रहने का इंतजाम और बाकी सारी चीजों की एक तस्वीर पेश करना जानते हैं। तो कोशिश ये है कि हम वो तस्वीर आपके सामने रखें जिसके जरिए कम से कम ये पता लगे कि जो तीर्थयात्री लगातार यहाँ रेल के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से पहुंच रहे हैं लगातार, वो किस तरह से यहाँ अपनी इन प्रक्रियाओं में जुड़े हैं, तो वही हमारी कोशिश होती है। तो इसी सीमन में तेज धूप, उमस और दिन ढलने के साथ तीर्थयात्रियों को मौसम थका जरूर देता है, लेकिन तीर्थयात्री लगातार यात्रा से जुड़ी उन प्रक्रियाओं को पूरा करने में लगातार लगे हुए हैं, और इस दौरान यहाँ रजिस्ट्रेशन पूरी कर अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। तीर्थयात्री जम्मू के धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक मंदिरों, यहाँ की धरोहरों को देखने के लिए भी जहाँ राही बस स्कीम शुरू की गई है उसके तहत भी इन स्थलों पर जा रहे हैं। वहीं यहाँ के बाजार, चौक चौराहे, विभिन्न कम्युनिटी सभाएं में वहाँ यात्री जो है तीर्थयात्री देखे जा सकते हैं। दिन की धूप होती है, कई बार हमने ट्रांजिट कैंप्स का भी को भी देखा और अंदर भी गए कि किस तरह से क्या चल रहा है। तो तीर्थयात्री जो है दिन के टाइम बहुत सख्त धूप भी होती है, हालांकि ये उमस भरा और धूप भरा महीना होता है, तो उसमें थोड़ी थकान भी होती है, सुबह होते होते फिर अच्छा भी लगता है, लेकिन दिन ढलते मौसम चेंज भी होता है जिसकी वजह से जो तीर्थयात्री है वो दिन में थक भी जाते हैं, लेकिन उन प्रक्रियाओं में जो सफर की है, जो इस यात्रा की है, उन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद वो इन ट्रांजिट कैंप्स में सुस्ताते भी नजर आते हैं और

0: काम करते भी देखे जा सकते हैं। तो लगातार तीर्थ यात्री जो है वही रेलवे स्टेशन से और बसों के माध्यम से यहाँ पहुंच रहे हैं, और रेलवे स्टेशन पर भी तीर्थ यात्रियों का तांता लगा हुआ है। यहाँ हेल्प डेस्क अनाउंसमेंट्स की जाती है, तीर्थ यात्रियों के लिए विशाल ट्रांजिट कैंप बनाया गया है जिसमें ये तीर्थ यात्री यहाँ अपने सामान को पहुंच कर यहाँ अपना सामान लगाते हैं, थोड़ा थकान दूर करते हैं, उसके बाद इन प्रक्रियाओं में जुड़ भी जाते हैं। टोकन लेना है, रजिस्ट्रेशन करनी है, RFID कार्ड लेने हैं, मेडिकल चेकअप करना है, तो ये एक फुल फ्लजेड एक आपको एक पूरी तरह से तैयार रहना है, तब जाके फिर अब आपको अपनी बारी के तहत भगवती नगर के बेस कैंप में पहुंचना है। तो एक बड़ा सिलसिला होता है तीर्थ यात्रियों के लिए। तो यहाँ उसी को देखते हुए विशाल ट्रांजिट कैंप बनाया गया है जिसमें तीर्थ यात्री अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं
1: और अपनी थकान भी दूर कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, वही श्रद्धालु जम्मू की विभिन्न स्थानों की सैर और यहाँ के खाने पीने, यहाँ की कला संस्कृति को देखने और कुछ देर के लिए ही वो जरूर हिस्सा जरूर बनते हैं। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि बार बार जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने भी अपने कई बार जो दौरे किए, उन्होंने ट्रांजिट कैंप पर चाहे श्रीनगर में चाहे जम्मू में, तो उन्होंने तीर्थ यात्रियों को ये कहा कि आप यहाँ की कला संस्कृति को भी आपको देखने का मौका है, और ये मौका आप सिर्फ तीर्थ यात्रा की प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ के बाजारों में यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की कला को, यहाँ के अलग अलग जो जगह है, पर्यटन स्थल है, ऐतिहासिक मंदिर है, शिव स्थल है यहाँ भी, तो उनकी भी उनकी तरफ भी जाइए ताकि आपका वक्त भी गुजरे और आप थोड़ा यहाँ के कल्चर को, यहाँ की इस सारी कला को भी आराम से देख सके। तो वो उसमें हिस्सा जरूर लिया जाता है, और उसमें सरकार ने जैसे मैंने कहा राही बस स्कीम जो है वो उसी का एक हिस्सा है, ताकि तीर्थ यात्री को, जो लाखों तीर्थ यात्री आते हैं, ये मौका है जम्मू कश्मीर के प्रशासन के लिए भी कि उन तीर्थ यात्रियों को हम विभिन्न स्थलों तक ले जाए, ताकि ये स्थल भी पूरे मुल्क में, क्योंकि ये जो तीर्थ यात्री है ये एक ही राज्य से तो नहीं आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, अलग अलग जगहों से यहाँ पहुंच रहे हैं। तो उनके लिए भी एक मौका है कि उन तक वो सारे पर्यटन स्थल भी उनको दिखाए जाए, ताकि वो उनको पता लगे कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से क्या कला, क्या संस्कृति, क्या यहाँ का कल्चर है, तो वो भी चल रहा है। तो कुछ देर के लिए हिस्सा जरूर तीर्थ यात्री जरूर बनते हैं। रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत बड़ा शिव मार्केट भी है जहाँ तीर्थ यात्रियों की कतारें लगी हुई हैं, जहाँ खाने पीने को लेकर कई बार लंगर से उकता जाते हैं तीर्थ यात्री, तो अपनी कुछ पसंदीदा चीजें खाने की, हालांकि यहाँ के जो लंगर है बहुत बहुत बहुत अलग तरह के लंगर है,
1: बिल्कुल वैरायटी रखी जाती है उन लंगरों में तीर्थ यात्रियों के लिए। जी
0: अलग अलग तीर्थ यात्री, मतलब वहाँ अलग अलग खाने बनते हैं, जम्मू के व्यंजन भी बनते हैं, अलग जो देश के विभिन्न और हिस्से हैं उनके व्यंजन भी बनते हैं, तो एक अलग तरह के व्यंजनों का स्वाद भी इन लंगरों में दिया जाता है। मगर फिर भी तीर्थ यात्री कई बार अपने लेवल पर मार्केट्स में, बाजारों में, ढाबों पर, अलग अलग जगहों पर देखे जा सकते हैं, वो उन व्यंजनों का मजा भी लेना चाहते हैं और थोड़ा लोकल भी होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये जो तीर्थ यात्री है वही अपनी खरीदारी भी करते हैं, तो एक अलग तरह का माहौल जम्मू में देखा जा सकता है। तीर्थ यात्रियों के अलग से चाय के लंगर में कहूँ, देखिए चाय के लंगरों में सुबह चना पूरी यहाँ बड़ी खास मानी जाती है जम्मू की, तो वो भी खाते देखा जा सकता है। तो शहर के हर कोने में तीर्थ यात्रियों को कहीं पैदल आप देखेंगे, कहीं ऑटो में देखेंगे, कहीं दूसरी तीसरी जगह पर भी, मतलब अलग अलग बाजारों में भी देखेंगे और पुराने शहर के बाजारों में भी देखेंगे। तो एक अच्छी बात जो है वो सुरक्षा के साथ चल रही है, यहाँ सुरक्षा में तैनात जो मुख्तलिफ एजेंसियां हैं, पुलिस कर्मी है, वो जगह जगह पर नाकों पर तीर्थ यात्रियों की पूरी तरफ से नजर भी रखते हैं उन पर, और तीर्थ यात्रियों एक गाइड के तौर पर भी वो अपना काम देते हैं कि किसी को इस तरफ जाना है, कितना किराया देना है, हालांकि सारा सार्वजनिक किया गया है, ब्लैक एंड व्हाइट है, ऑटो में आप बैठेंगे, आपको कहाँ जाना है उसका एक बाजार का मीटर की गई है, तो किसी तरह से धोखा देने की कोशिश नहीं होती है, मतलब बट ये है कि प्रशासन ने हर लेवल पर कोशिश की है कि तीर्थयात्री एक तो यात्रा के जब डेट होगा उनका वो तब यात्रा करें, लेकिन उसके अलावा शहर के दूसरी चीजों में भी वो व्यस्त रहे ताकि उनका ये वक्त जो है उनका जो डेट है बराबर आए और उसके बाद वो बेस कैंप पहुंचे। तो यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर है और इस अच्छे कुल मिलाकर एक अच्छे अनुकूल माहौल में तीर्थयात्री यात्रा के लिए तैयारी कर रहे करते

0: है और यहाँ कई बार तीर्थयात्रियों को कई मुश्किलात और कठिनाइयां भी इस दौरान मिलती है, शिकायत भी करते तीर्थयात्री कई बार दिखते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में तीर्थयात्रियों का ख्याल समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है। तो अभी तक शहरवासी, सरकार, प्रशासन, सिक्योरिटी एजेंसियां साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है, जिसका सबूत अभी पिछले लगभग 3 तारीख को ये यात्रा शुरू हुई थी औपचारिक रूप से, तो आज 10 तारीख है, 1,60,000 से ऊपर तीर्थयात्री जो है वो दर्शन कर वापस लौट भी रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है और लाख हजारों की तादाद में अभी तीर्थयात्री पहुंच भी रहे हैं यहाँ, और ये जो गति है तीर्थयात्रियों के आने की उसमें लगता है कि अभी और ये जोर पकड़ेगी और तीर्थयात्री और पहुंचेंगे। तो एक बड़ा चैलेंज है समाज के हर वर्ग को, चाहे जम्मू में स्थानीय लोगों के लिए भी और सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए भी, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए भी, उसी तरह से श्रीनगर में भी इसी तरह से, या कश्मीर के विभिन्न जहां पहलगाम का रास्ता है या बालटाल का रास्ता है, दोनों तरफ एक बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए भी और स्थानीय लोगों के लिए भी। इसीलिए रोज जो प्रशासन भी है वो ट्रांजिट कैंप्स का दौरा करती है, चीफ फैक्ट्री जो है यहाँ के, उन्होंने कल मीटिंग ली, उसमें उन्होंने तीर्थयात्रियों के रहने खाने उनके जो इंतजाम है उनको देखने की समीक्षा की। तो रोज ये समीक्षाएं होती है, निचले लेवल पर भी होती है, ऊपरी लेवल पर भी होती है, पुलिस की लेवल पर भी, एजेंसियों के लेवल पर भी, ताकि क्योंकि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, उनके कार्ड चेक करने हैं, एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है जो सरकार अभी तक बखूबी निभा रही है, और तीर्थ यात्रा बहुत शांतिपूर्वक और बहुत अच्छे और अनुकूल माहौल में देखी जा सकती है।
1: बिल्कुल जावेद, हम यूं कह सकते हैं कि कुल मिलाकर अगर हम ये कहेंगे हमारी प्रशासन जो है वो हर तरीके से इन यात्रियों की सुविधा में लगे हुए हैं, उनके लिए हर एक किस्म की सुविधा रखी जा रही है ताकि हमारे यात्री जो है उनको किसी भी किस्म की असुविधा का सामना ना करना पड़े।
0: बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि डिपार्टमेंट्स की ड्यूटी लगाई गई है, डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी लगभग, देखिए जहां लगभग कोई अभी 20 से ज्यादा ट्रांजिट कैंप्स जम्मू में बनाए गए हैं और वहां पर पानी, बिजली और ज्यादातर 100 किस्म की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ ये कर्मचारी बराबर देख रहे हैं, और किसी भी तरह की कोई पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह से कट नहीं होना चाहिए, फैन बराबर होने चाहिए, गर्मी भी है तो बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। उसके दौरान आपको ग्रुप्स तैयार करने हैं, जिनकी डेट आ गई है उनको देखना है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बखूबी निभाई भी जा रही है, तभी यात्री जो है इस पूरे सफर को, इस कठिन, हालांकि ये कठिन सफर है, यहाँ पहुंचना भी इतना आसान नहीं है, उनको भी एडवाइजरी जो है उस पर अमल करने की जिम्मेदारी है, और बार बार अनाउंसमेंट्स के जरिए, एडवर्टीजमेंट के जरिए पूरे शहर में हर जगह चौक चौराहे पर आपको एक बोर्ड मिलेगा जहाँ नंबर्स है, हेल्पलाइन डेस्क के नंबर्स है, डूज एंड डोंट्स क्या करना है, तीर्थयात्रियों को पहुंचते क्या करना है, वहां जब आप तीर्थ यात्रा के लिए निकलेंगे उसके लिए क्या करना है, तो जो इंफॉर्मेशन है उसको हर लेवल पर साझा किया जा रहा है ताकि तीर्थयात्री को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, और अभी तक उस लेवल पर कोई बड़ी परेशानी सामने नहीं आई है।
1: तो आशा है आगे भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े हमारे यात्रियों का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
1: तो श्रोताओं, ये थे जम्मू भगवती नगर से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के आपके लिए हम यहाँ पे रहते हैं इस प्रसारण में, सिर्फ इसीलिए आपको अपडेट करते रहे हम। तो अपडेट लेकर हमारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पहलगाम से हमारे संवाददाता एस तारिक जी। तारिक
1: जी, शाहिना, अभी बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ जी के भक्तों की यात्रा सुखद और स्वस्थ तरीके से जारी है। आस्था और श्रद्धा से भरपूर इस यात्रा के दौरान आज सुबह 4 बजे उन्होंने आधार सेवा से और निजी अकोमोडेशन से 10,000 से ज्यादा यात्रियों का जत्था चंदनवारी से होकर शिशनाग और पंचतरणी पहुंच चुके हैं। इधर शिशनाग और पंचतरणी में रात बसर करने वाले यात्रियों की पवित्र अमरनाथ गुफा की जानिब पैदल यात्रा सफलता के साथ पूरी हुई और वह वहाँ शिवलिंगम का दर्शन का सौभाग्य हासिल कर चुके हैं। दूसरी जानिब जम्मू के भगवती नगर आधार शेवत से 8,796 यात्रियों पर मुश्तमिल 9वां जथा घाटी में प्रवेश कर चुका है। इसमें पहलगाम के प्राचीन मार्ग के लिए 181 छोटी बड़ी गाड़ियों में 5,346 बेस कैंप पहुंच चुके हैं। इनमें 4,038 पुरुष, 1,106 महिलाएं, 191 साधु, 39 साध्वी, एक बालक, एक ट्रांसजेंडर शामिल है। 57 दिनों की जारी वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा में दर्शन हासिल करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो मौसम एहदादुशुमार के मुताबिक 3 जुलाई से अब तक लगभग 2.25 लाख से ज्यादा भगत बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य हासिल कर चुके हैं, जबकि गुजशत रात दर्शन हासिल करने वाले यात्रियों की संख्या 27,378 रही है। और आज दिन जब मैं आपसे मुखातिब हूँ यानी 2 बजे 20,512 यात्री दर्शन कर चुके हैं और ये सिलसिला शाम 7 बजे तक लगभग जारी रहेगा। अब मौसम की बात करें तो पहलगाम और इसके गिरदनावा में पूरे यात्रा मार्ग पर मौसम खुशगवार है। यात्रा पूरी रफ्तार और जोश खरोश के साथ जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस वक्त पहलगाम से लेकर पवित्र गुफा तक दर्जे हरारत तकरीबन 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इतनी महत्वपूर्ण यात्रा और इसके सुचारू संचालन नजर रखने के लिए यात्रा अफसर, कैंप डायरेक्टर खुद उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा निगरानी कर रहे हैं। एलजी प्रशासन और यात्रा प्रशासन की निगरानी में यात्रा के हर पहलू पर नजर रखने के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल सेंटर पहले ही वहां रखा गया है। यात्रियों की तबीयत सहूलियत के लिए नुनवन और भालतल बेस कैंपों में 200 बिस्तरों वाले अधैनिक फील्ड अस्पताल स्थापित कर दिए गए हैं, जहां आपातकालीन चिकित्सा सहायता 24 घंटे उपलब्ध रखी जा रही है। और पूरे मार्ग में ये जो हेल्थ के ऑफिसर है या वहां के पैरामेडिकल स्टाफ गश्त कर रहे हैं। तो प्रबंधन के और यात्रियों के लिए जीवन बीमा राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दी गई है, जिसका ऐलान पहले ही कर चुके हैं वो। जबकि यात्रियों के आवागमन पर प्रभावन निगरानी के लिए QR कोड, जिसको हम पहचान या आधारित कहते हैं, वो चेतावन प्रणाली भी लागू की गई है, जिसके माध्यम से यात्रा के हर चरण पर यात्रियों के आमद रफ्त का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। जी चाइना
0: जी, तारिक आपसे जानना चाहेंगे अभी जो पवित्र गुफा, मौसम कैसा है वहां पे?
1: मौसम बिल्कुल खुशगवार है, मौसम बढ़िया है। 26 डिग्री सेल्सियस का मतलब है मौसम साफ शफाफ है, लेकिन अभी जब ज्यादा गर्मी बढ़ती है तो मौसमियात के मुताबिक जो उन लोगों ने पहले ही ये कहके रखा है कि फिर बलाई इलाकों में हल्की या धीमी हवाएं चलती हैं या हल्की बूंदाबांदी होती है, इससे कोई परेशानी तो नहीं होती है। अलबत्ता ये जो है यात्रियों के लिए तरियाक साबित होता है, यात्रियों के लिए एक सहूलियत साबित होती है क्योंकि काफी गर्मी है, पैदल चलना है, काफी लंबा सफर होता है और इस लंबे सफर में बिल्कुल ये यात्री जो शरबोर होते हैं पसीने से, उसमें अगर ठंडी हवाएं चलती है, हल्की सी बारिश होती है, तो ये उनके लिए एक मुफीद सफर के लिए एक मुफीद सा मामला बन जाता है।
0: बिल्कुल, इस मौसम का आनंद लेते हुए हमारे यात्री जो है आगे बढ़ रहे हैं। हमारी भी यही मनोकामना है हमारे यात्री जो है उनकी यात्रा सफल रहे। तो तारिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत शुक्रिया।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और डीटीएच की आराधना सर्विस न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं।
1: जी सही कहा आपने, शरण के अपडेट्स लेकर हम यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। तो एक और अपडेट आपके साथ साझा करना चाहेंगे जो 2 बजे तक हमारे पास आया है। ये अपडेट है दर्शन अपडेट। 20,512 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। तो जो है संख्या की बात करें, पुरुषों की संख्या रही है 13,132, महिलाएं 6,702 और बालक की बात करें 266, साधु 135, साध्वी 18 और सुरक्षा कर्मचारी 259। ऐसे कुल मिलाकर जो आंकड़ा आज का बना है दर्शन अपडेट का 2 बजे तक, तो 2 बजे तक 20,512 तीर्थ यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त किए हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और अगली आवाज़ जो आप तक पहुंचेगी सायका की होगी।
2: जी श्रोताओं, आपको बता दें कि इस वक्त फ़ोन

0: इनके माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता जो कि बालतल मार्ग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रहीम रिजवान। आइए जानते हैं इनसे क्या कुछ अपडेट्स हैं इनके पास बालताल को लेकर। जी रिजवान साहब।
1: बिल्कुल, जो है अभी आपने अपने श्रोताओं तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है कि 20,512 श्रद्धालु ने 2 बजे तक तीर्थ यात्रा के जरिए जो हमारी गुफा है, पवित्र गुफा, वहां जाकर दर्शन किए। सही बात है, 3,880 मीटर ऊंचाई पर स्थित बाबा बर्फानी की गुफा पर आज तक, अगर हम सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अपने श्रोताओं को बताएंगे तो 1,72,000 श्रद्धालु देश के विभिन्न भागों से पवित्र गुफा पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पे माथा टीका है और दर्शन करके सुरक्षित वापस पहुंचे। तो आज सुबह 10 बजे तक अगर बालतल की हम बात करेंगे तो बालतल में बिल्कुल मौसम सुहाना ही है, खुशगवार वातावरण के बीच 14,500 श्रद्धालु सुबह 10 बजे तक बेस कैंप बालतल से पवित्र गुफा की तरफ दर्शन के लिए रवाना हुए। इन यात्रियों में 8,516 पुरुष, 5,064 महिलाएं, 529 बालक बालिका, 78 साधु, 59 साधिया, 9 ट्रांसजेंडर और 247 सुरक्षा कर्मी भी थे। और आज अगर हम बात करेंगे जो श्रद्धालु जिन्होंने वहां पवित्र गुफा पर दर्शन किया और वापस धीरे धीरे बालतल पहुंचे तो उनकी संख्या हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि 3,332 श्रद्धालु कुल आज बालतल बेस कैंप सुरक्षित वापस पहुंचे, जिनमें 2,620 पुरुष, 590 महिलाएं, 23 बालक बालिका, 19 साधु, 2 साधिया एवं 78 सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। इस तरह देश के विभिन्न भागों से जितने भी श्रद्धालु बालतल बेस कैंप पहुंच रहे हैं उन्हें एक के बाद दीगरे पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया जाता है और वो सुरक्षित वहां से दर्शन करके वापस आते हैं। और रात्रि विश्राम के बाद बालतल बेस कैंप से अगले रोज उन्हें अपनी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना किया जाता है। इस हवाले से आज हम अपने श्रोताओं तक ये भी बताना चाहते हैं कि आज जम्मू कश्मीर यूटी के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने भी बालतल का दौरा किया और जो व्यवस्थाएं हैं उनका बाज़ाब्ता तौर जायजा लिया। उनके हमरा सूबाई और जिले इंतजामिया के आला अफसर हम भी थे। मनोज सिन्हा आज बालतल बेस कैंप पहुंचे जहां उन्होंने लंगर जो लगाए गए हैं वहां पे या दीगर व्यवस्थाएं जो है श्रद्धालु के लिए रखी गई हैं उनका बाज़ाब्ता तौर रिव्यू भी लिया है और इसके साथ साथ जो सुरक्षा कर्मी वहां पे तैनात थे उसका भी उन्होंने बाज़ाब्ता तौर जायजा लिया। उन्होंने अपने दौरे के दौरान इंतजामिया को ये हिदायत दी है कि श्रद्धालु को हर मुमकिन सहूलियात वहां पहुंचाने के लिए मौसर इकदाम उठाने की जरूरत है ताकि श्रद्धालु को तीर्थ यात्रा पे आए हुए जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जी
0: जी रिजवान साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे यात्रियों की मात्रा में जो है दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या हमारे यात्री जो है प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं?
1: बिल्कुल, जो यात्री हैं उन्होंने आकाशवाणी को बताया और बार बार बताते रहते हैं कि इस वर्ष प्रशासन ने यात्रियों के लिए जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं उस पर सभी यात्री संतुष्ट थे। खासकर
0: जी जी श्रोताओं, आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमारा कॉन्टैक्ट जो है हमारे संवाददाता से टूट गया। हम फिर से इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे।

0: श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग, और फिर से हमारा राबता जो है जुड़ चुका है हमारे संवाददाता से, जो कि बालतल गांदरबल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रहीम रिजवान जी। रिजवान साहब
1: जी, बिल्कुल, आपने अभी जो कहा कि जो श्रोताओं जो हमारे यात्री हैं, क्या वो व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जितने भी,
0: क्योंकि मात्रा जो है बढ़ रही है, इस वजह से हम आपसे जानना चाहते हैं। ये
1: सही बात है, जितने भी श्रद्धालु शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल बेस कैंप पहुंचते हैं, और बार बार हमने उनसे बात की और उन्होंने आकाशवाणी को

0: आया कि इस वर्ष जिला प्रशासन गांधरबल ने यात्रियों के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं रखी हैं वो देखकर वो काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं कि इस वर्ष जो यात्रियों की संख्या है वो रोज बर रोज बढ़ती जा रही है और बड़ी मात्रा में जो देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालु वो पवित्र गुफा पहुंच रहे हैं और माथा टेक कर दर्शन शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस रवाना हो रहे हैं। आशा की जाती है कि आए रोज ये जो संख्या है इसमें और इजाफा होगा क्योंकि जैसे व्यवस्थाएं इस वर्ष की गई हैं उसको लेकर जो यहाँ से श्रद्धालु वापस जाते हैं वो देश के विभिन्न भागों में ये मैसेज पहुंचाते हैं कि इस साल काफी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी बनी हुई है, यात्रियों के लिए अच्छी उपलब्ध रखी गई है। लिहाजा हर एक को चाहिए कि वो अच्छे तरीके से, और वहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं, लिहाजा ऐसे माहौल में ऐसे वातावरण में जो श्रद्धालु है वो यहाँ आना चाहते हैं और पवित्र गुफा जाकर शिवलिंगम का दर्शन करके वापस सुरक्षित जाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जय शिवम घाटी की अमन शांति के लिए यहाँ आए रोज
1: जी जी श्रोताओं, एक बार फिर से हमारा राबता जो है वो कट चुका है रिजवान साहब से, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो दे दी है। उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त जो है हमारे यात्री बहुत ही मात्रा में आ रहे हैं, और लेकिन प्रशासन ने बहुत सारी सुविधाएं रखी हुई हैं जिस वजह से हमारे यात्री जो है संतुष्ट हैं, संतुष्ट नज़र आते हैं, और ख़ासकर यहाँ का मौसम भी जो है सुहाना हो जाता है क्योंकि कई बार हल्की फुल्की वर्षा भी हो जाती है जिसकी वजह से मौसम जो है बहुत बेहतर होता है और हमारे यात्री इस अच्छे से मौसम में बहुत ही आनंदमय तरीके से अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। बने रहिए क्षण क्षण के अपडेट्स के लिए हमारे।

0: श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग, और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं मोहम्मद तस्कीन बानिहाल के आधार शिविर से। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ अपडेट्स हैं इनके पास। जी तस्कीन साहब
1: जी, आज नवा बेज जो है सुबह रवाना हुआ जम्मू से कश्मीर की तरफ, तो उसके बाद जो रूटीन में जो पिछले 8 रोज से हो रहा है कि वापस जो दर्शन करके यात्री आ रहे हैं, तो उनके काफले भी पहुंच चुके हैं। मतलब एक तो जो पहलगाम वाला वो थोड़ा पहले ही निकलता और उनकी मंजिल कम है, सफर कम है, तो वो जम्मू पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं आसपास है जम्मू के। जबकि जो पालतल वाला कदरे देर से निकलता और मुसाफत भी इनकी दूर है, तो ये काफला भी इस वक्त जो है उधमपुर से गुजरकर जम्मू की तरफ बढ़ रहा है। तो मजमुई तौर पर जो सफर जो दोनों मतलब जो काफले थे जम्मू और श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू जाने वाले, बिल्कुल बगैर किसी ब्रेक के, बगैर किसी रुके जगह, सिर्फ इनको बानहाल में जो बालतल का जो ये जो काफला होता है उसे वहां पर ठहराया जाता है रूटीन में। तो वहां पर उनने जो लंच वगैरह किया, कुछ ने नाश्ता किया, तो उसके बाद जो पहलगाम वाला ग्रुप था तो उन्होंने करीबन 12 बजे के आसपास जम्मू में ये चंद्रकूट के जो वहां पर लंगर्स लगाए गए हैं, करीबन 10 लंगर वहां पर हाईवे पर लगाए गए हैं मुख्तलिफ समाजी और मजहबी जमातों की तरफ से, तंजीमों की तरफ से, तो वहां पर उनने लंच करने के बाद जो वो अभी जम्मू पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर जो आज सुबह तक जो भगवती नगर से बेस कैंप से जो कश्मीर की तरफ जो श्री अमरनाथ यात्री आ रहे हैं, हुकाम के मुताबिक आज के काफले को मिलाकर 8,796 आज लोग थे इसमें, जो यात्री इसमें थे, तो कुल मिलाकर अब 61,612 तादाद पहुंच गई है जो आज तक 9 काफले आए हैं जम्मू भगवती नगर के बेस कैंप से। इस दौरान जो हाईवे पर रूटीन में होता है वो ये कि 3 बजे के बाद किसी भी गाड़ी को बानहाल से कश्मीर की तरफ नहीं जाने दिया जाता है जो यात्रा से रिलेटेड हो या जिसमें टूरिस्ट हो। मतलब जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होता है और उनका 11:30 बजे तक रात को चलने की इजाजत दी जाती है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या टनल के आर पार जाने की। लेकिन जो भी जो टूरिस्ट हैं और जो यात्रीज हैं तो उनके लिए ये सख्ती से इस पर अमल दरामद कराया जा रहा है हुकाम की तरफ से, पुलिस की तरफ से। रोज हाईवे पर इसको लेकर बड़ा जमावड़ा लगा रहता है, चाहे बानहाल में हो या चंद्रकूट में, क्योंकि लोग बजिर होते हैं कि हमें छोड़ा जाए। लेकिन वहां पर ऑफिसर्स होते हैं जैसे SDPO बानहाल, तो हर वक्त उधर ही खड़े होते हैं, SDM होते हैं, तो उनका यही कोशिश होता है कि ये इनको बेसिक पे समझाया जाए तो फिर जाकर समझते हैं, तो उनको रोका जाए। 3 बजे के बाद बानहाल से आगे कोई गाड़ी नहीं जाती, कोई यात्रा गाड़ी और कोई टूरिस्ट गाड़ी चलने की इजाजत नहीं है। और इसी तरह 2 बजे के बाद चंद्रकूट में जो लंगर्स लगाए गए वहां पर ठहरने का भी इंतजाम है, 5,000 लोग वहां पर जो यात्रा निवास है वहां पर ठहर सकते हैं, उसमें गुंजाइश है इतनी, तो उनको वहां पर 2 बजे रोका जाता है। और 2 बजे के बाद यानी यात्रियों को यह जहन नशीन करना चाहिए कि जो भी जम्मू से निकलता है उसको इसी तरह से अपना प्लान मुरतब करना चाहिए। इस दौरान जो ट्रैफिक सुबह बंद रहता है 11:30 बजे तक कश्मीर से जम्मू की तरफ जाने वाला मुसाफिर ट्रैफिक, तो उसे भी चलने की इजाजत दी गई है और इस वक्त वो बढ़ रहा है। वो ट्रकों को एक ही तरफ से चलने की इजाजत होती है यात्रा के दौरान। इन दिनों में जो भी ये 2 महीने तक मुहित है, जो कुल सफर 56-57 दिन तक, तो उसमें ट्रकों के लिए जो एडवाइजरी है वो ये कि वो एक रोज जम्मू से और एक रोज श्रीनगर से चलते हैं, तो आज जम्मू से ट्रक भी कश्मीर की तरफ आ रहे हैं।

0: तो स्किन साहब, वहां पे इस वक्त मौसम के हाल चाल कैसे हैं? मौसम कैसा है?
1: मौसम खुशगवार है बनिहाल में, खासकर कहेंगे। हालांकि रामबन में टेम्परेचर यहाँ से ज्यादा होता है
0: जी
1: और
0: जी
1: उसके अलावा जो ह्यूमिडिटी होप्स जो होता है बहुत ज्यादा होता है, तो लेकिन यहाँ पर खुशगवार है। उसके बाद जो बटोत के नीचे नाशरी वगैरह उसमें क्योंकि बादल है सुबह से कुछ इलाकों में, यही बादल और धूप का खेल जो है वो चल रहा है। और मौसमियात ने आइंदा कुछ रोज तक इस इलाके में भी, यानी चिनाब वैली में भी कहा गया है महकमा मौसमियात की तरफ से कि इसमें मतलब बारिशें होने वक्फे वक्त की, लेकिन तेज बारिश मतलब उसके भी इम्कान जाहिर किए गए हैं।
0: और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये हमारी यात्री जो आ रहे हैं, तो इस रास्ते पर, इस मार्ग पर कहीं बाधा तो नहीं है?
1: बिल्कुल किसी किस्म का कोई अब तक कोई रिपोर्ट ही ऐसा वाका हुआ ही नहीं जिसमें किसी किस्म का कोई, हाँ ये गाड़ी खराब होती चेंज कर, आज भी एक गाड़ी का कुछ ब्रेक डाउन हुआ था, तो लेकिन बाद में जो 7 गाड़ियां होती हैं मतलब उसके लिए जो बैकअप रखा गया है बसें वगैरह की सूरत में, लेकिन इसी गाड़ी को बाद में ठीक किया गया, जो मैकेनिक्स वगैरह जो सब पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनके लिए खड़ी है, इंतजामिया है, फौज है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, मतलब हर जगह पर मतलब अच्छे इंतजाम किए गए हैं। उस वजह से जो यात्रा बगैर किसी, जैसे हजारों की तादाद में यात्री होते हैं और सैकड़ों गाड़ियां होती है, पूरा काफले होते हैं, तो उनको बहफाजत जो एक टास्क लिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो बखूबी अंजाम दिया जा रहा है और बेहतर तरीके से यात्रा जो है अपनी मंजिलों की तरफ आ जा रही है।
0: जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विवरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी बहुत शुक्रिया।
0: श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता बनिहाल से, जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग का हालचाल भी बता दिया और ये भी बताया कि यात्रा जो है बिना किसी बाधा के चल रही है, और हमारी भी यही कामना है कि ये यात्रा सुखद तरीके से चलती रहे।

0: दिखा दे। विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। तो श्रोताओ, हम आपके साथ जुड़े रहते हैं प्रातः 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, और हम आपको अपडेट कराते रहते हैं, और साथ साथ हमारे जो संवाददाता हैं वो भी आप तक अपडेट पहुंचाते रहते हैं। और इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमारे श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप पांथा चौक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर इमरान नायको जी। इमरान जी, इमरान
1: जी, बिल्कुल, जैसे कि श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेके हम मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि श्रीनगर के इस पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से अमरनाथ

0: यात्रियों की जो आमद है वो जारी है और यहाँ से यात्रियों को अमरनाथ जी गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया जा रहा है। और आज भी श्री अमरनाथ जी यात्रियों के दो अलग अलग जत्थे यहाँ पांथा चौक ट्रांजिट के पहुंचे हैं, जो यहाँ नाइट स्टे करेंगे और कल उन्हें पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा। और इसके अलावा जो कल यहाँ श्रद्धालु या जो यात्री पहुंचे थे, आज उन्हें अमरनाथ जी के पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया है, जिसमें मर्द खवातीन और साधु साध्वी भी शामिल थे और कुछ इसमें बच्चे भी थे। और ओवरऑल गवर्नमेंट की जो यहाँ अरेंजमेंट्स यात्रियों के लिए रखे गए हैं उनका लाभ लेते हुए यात्री आज पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किए गए। सख्त तरीन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बीच में, जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल थे। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि यात्री यहां श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप पर पहुंच रहे हैं और यहां उनके लिए हर तरह की सुविधाएं रखी गई है। और जैसे सुबह भी हमने अपडेट किया था कि कल शाम को यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आए थे और उन्होंने इस ट्रांजिट कैंप में ओवरऑल अरेंजमेंट्स का या इंतजाम का यहाँ पे रिव्यू लिया और डायरेक्टर जनरल पुलिस और श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल्स और दीगर जो पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के आला अफसरान वो भी मौजूद थे और क्लियर का डायरेक्शंस तमाम डिपार्टमेंट्स को एलजी साहब की तरफ से दी गई कि यात्रियों को हर तरह की जो असिस्टेंस चाहिए, यात्री को हर तरह की जो सहूलियत है उसको एंश्योर करे और किसी भी यात्री की कोई शिकायत ना मिले। तहम उन्होंने यात्रियों से भी अपील की कि जो यहाँ लोकल जो प्रोडक्ट्स है, कश्मीर आर्ट जो है, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम है, वो यात्री यहाँ से खरीदे ताकि इसकी भी एक तस्वीर हो और ताकि कश्मीर का जो यहाँ की जो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ का जो हैंडलूम है, तो उसकी भी जो है वो भी हमारी इकोनॉमी का हिस्सा बन जाए जब यहाँ यात्री उस चीज को खरीदेंगे। और यात्रियों से भी कहा गया है कि वो गवर्नमेंट की तमाम नॉर्मल प्रोटोकॉल्स और एडवाइजरीज को फॉलो करें और साथ ही ये भी कहा गया है कि किसी भी अनासिर को कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन जो कोई जाली रजिस्ट्रेशन हो उसकी उस पर नजर रखी जाए और उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और साथ ही ये भी कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन के साथ सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इस यात्रा को पीसफुल बनाने के लिए अपना जो योगदान है, अपना जो रोल जो है वो प्ले करें। सो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अभी तक अमरनाथ जी यात्रा पीसफुल तरीके से जारी है और आज भी श्रीनगर शहर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप की पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं और यहां से अमरनाथ जी यात्रियों को पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया और अभी इस वक्त भी यहां यात्री पहुंच रहे हैं जो कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यहां पे आ रहे हैं। और यात्रियों के लिए हर तरह की यहाँ फैसिलिटीज है, हर तरह के यहाँ अरेंजमेंट्स है, जैसे कि यहाँ खाने पीने की चीजें हैं या यहाँ पर लंगर्स है, कम्युनिटी किचन है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है या बाकी जितनी भी फैसिलिटीज हैं।
1: जी इमरान, मुझे ये बताइए आपके हमारे यात्री जब पहुंचते हैं आपके ट्रांजिट कैंप, उनको कुछ देर स्टे करना होता है, चाहे एक नाइट या एक दिन, वो उस बीच वहाँ का आनंद लेते हैं, शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं कहीं पे, या उनको सीधे वहाँ गुफा की ओर रवाना कर दिया जाता है?
0: देखिए बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ भी आप देखेंगे ट्रांजिट कैंप्स गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किए हैं, वहाँ यूजुअली यात्रियों के लिए कहा गया है कि वो ट्रांजिट कैंप में ही रहे। और आप देखेंगे अंदर से जो लंगर्स लगाए गए या बाकी जो स्टॉल्स लगाए गए हैं तो उसमें जैसे कश्मीर आर्ट कोई स्टॉल लगाया हुआ है या कोई पर्सनली कोई खरीदना चाहता है तो वो बिल्कुल मार्केट जाते हैं, जा भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम भी यात्रियों से बात करें, इवन यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यात्री बाहर या दुकानों पर या शॉप्स पर जाकर जो उनको पर्सनल कुछ चीजें खरीदनी हो तो वो जाते हैं, या रास्तों पे भी अगर आप देखेंगे जहां जहां पे यात्री रुकते हैं तो उन जगहों पर अमरनाथ जी यात्री जो है चीजें खरीदते हैं या जो उनको कोई किसी किस्म की कोई नेसेसरी की जरूरत है। सो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जैसे कल एलजी साहब ने भी अमरनाथ जी यात्रियों से कहा है कि वो यहाँ शॉपिंग करें, खासकर कश्मीर का जो हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, और उससे क्या है कि यहाँ तो एक इकोनॉमी भी उसमें मदद होगा और मदद होगी और दूसरा ये कि जो हमारे लोकल आर्टिजन्स हैं उनको भी इससे एनकरेजमेंट मिलेगी, उनको भी इससे हौसला अफजाई मिलेगी। सो हम देख रहे हैं कि यात्री आ रहे हैं और यहाँ कश्मीरी आर्ट का, कश्मीर हैंडलूम का या कश्मीर की इस यात्रा के साथ साथ ओवरऑल फिजा का भी आनंद ले रहे हैं और यहाँ के मुख्तलिफ जो खास जगह हैं उसका भी वो जो है अपने तरीके से

0: एंजॉय भी कर रहे हैं और विजिट भी कर रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपका। तो श्रोताओं, ये थे हमारे श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप से इमरान नाइकू।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। इसके अलावा आप DTH की आराधना सर्विस न्यूज ऑन एयर के मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। और ये बता दें हम कि संरक्षण के अपडेट्स आपके लिए हम पहुंचाते हैं पूरे दिन, और अभी जो हमारे पास अपडेट है ये सुबह का अपडेट है, लेकिन आपके साथ साझा करना चाहेंगे। जी हाँ, आज प्रातः जो है जम्मू भगवती नगर से 8796 तीर्थ यात्रियों को घाटी की ओर रवाना कर दिया गया, तो बालतल मार्ग से 3450 तीर्थ यात्रियों को 173 छोटे बड़े वाहनों में घाटी की ओर जो है पवित्र गुफा की ओर रवाना कर दिया गया। और पहलगाम प्राचीन मार्ग की बात करें तो 5346 तीर्थ यात्रियों को दर्शन के लिए रवाना कर दिया गया 181 छोटे बड़े वाहनों में। तो संख्या की बात करें
1: जी बिल्कुल।

0: हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि कुल मिलाकर जैसा कि शाहीन ने बता दिया कि 8,796 तीर्थयात्रियों को जो है आज सुबह तड़के प्रातःकालीन में जो है रवाना कर दिया गया। और इनमें से अगर हम बात करें बालताल के मार्ग से, तो बालताल के मार्ग से जो है 2,388 पुरुष जो है रवाना कर दिए गए हैं, महिलाएं 936, बालक 9, साधु 77, साध्वी 7, और इनमें कुछ विदेशी तीर्थयात्री भी हैं जो कि 33, जिनकी संख्या है जो कुल मिलाकर 3,450 बन जाते हैं।
1: जी हाँ सायका, ये मैं पहलगाम की प्राचीन मार्ग की बात कर रही हूँ।
0: प्राचीन
1: पहलगाम की बात करें तो पुरुषों की संख्या रही है 4,038, और महिलाओं की बात करें 1,106, बालक 1 और साधु 151, साध्वी 49 और ट्रांसजेंडर 1। कुल मिलाकर बात करेंगे 5,346 तीर्थ यात्रियों को पहलगाम के प्राचीन मार्ग से रवाना कर दिया गया
0: और
1: है।
0: इनको 354 छोटे बड़े वाहनों में जो है रवाना कर दिया गया था आज प्रातःकालीन में।
1: जी हाँ, संख्या एक बार फिर बता दे अपने श्रोताओं को, 8,796 तीर्थ यात्रियों को आज प्रातः घाटी की ओर रवाना कर दिया गया, दो मार्गों के और रवाना कर दिया गया 354 छोटे बड़े वाहनों में। ऐसे अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग, और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। जी हाँ, 3 बजे तक जो अपडेट हमारे पास आया है 3 बजे का, तो यह अपडेट है दर्शन का। 30,152 तीर्थ यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त किए हैं। पुरुषों की संख्या रही है 14,802, महिलाएं 7,607, बालक 289, साधु 155, साध्वी 18, ट्रांसजेंडर 2 और सुरक्षा कर्मचारी 279। ऐसे कुल आंकड़ा रहा है 3 बजे तक का दर्शन के लिए जिन तीर्थ यात्रियों ने बाबा बर्फानी के पवित्र गुफा में अपना माथा टेका है। 23,152 आंकड़ा रहा है तीर्थ यात्रियों का। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा।

जी श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा के विशेष प्रसारण में। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH एवं न्यूज़ ऑन AIR आराधना चैनल के माध्यम से, और इसके अलावा हम वेव्स के OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। श्रोताओं, आपको बता दें

कि आज 4 बजे तक 25,532 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोले के द्वार पर जो है माथा टेका है, दर्शन किए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 16,218, महिलाएं 8,504, बालक 319, साधु 172, साध्वी 18, ट्रांसजेंडर 5 और सुरक्षाकर्मी 296। यूं कुल संख्या जो है बन जाती है 25,532 आज 4 बजे तक।

जी श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। हमारे संग एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच न्यूज़ ऑन एआईआर एवं आराधना चैनल के माध्यम से, और इसके अलावा वेव्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपलब्ध हैं। और यहाँ पर क्षण क्षण के अपडेट्स जो है आप तक हम पहुँचाते हैं, ताकि आपकी यात्रा जो है सुखद

तरीके से चलती रहे। इस वक्त हम बता दें आपको कि 4 बजे तक जो है कुल मिलाकर 25,532 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के द्वार पर जो है हाजिरी दी है, माथा टेका है, दर्शन किए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 16,218, महिलाएं 8,504, बालक 319, साधु 172, साध्वी 18, ट्रांसजेंडर 5 और सुरक्षाकर्मी 296। यूं कुल मिलाकर ये संख्या जो है 25,532 बन जाती है आज 4 बजे तक।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz पर, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन एयर के मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपलब्ध हैं।
1: जी हाँ, अपने श्रोताओं को ये भी बताएं कि क्षण क्षण के अपडेट्स के लिए हम आपके साथ जुड़े रहते हैं प्रातः 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, और हमारा यही लक्ष्य होता है कि आपको दिन भर अपडेट कराते रहे खुद भी, और अपने जो हमारे रिपोर्टर्स हैं या जो भी हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है उन सब से आपको अपडेट कराते रहे, ये हमारा प्रयास रहता है दिन भर। और हमें पूरी आशा है आपको जो ये प्रसारण जो हम आपके लिए पेश करते हैं, जिस प्रसारण में हम आपकी सेवा में रहते हैं, आपको आशा है पसंद आ रहा होगा, और जो भी इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है आप हमें बोल सकते हैं, साझा कर सकते हैं हमारे साथ, ताकि हम अपने प्रसारण को बेहतर बना सकें। और कुछ ही क्षणों में आप तक पहुंचेगी आरती जो हमने बालतल बेस कैंप में रिकॉर्ड की है। आइए आरती का आनंद लेते हैं।

ब्रह्मा

साथी मैं।

0: अजेहम निराकार गोकार कुलम तुरीयम विराजान गोती समी संगिरी कराल महाकाल कारण कृपाल गुणागार संसार पारम सारा त्रिशंका मनोभूत कोटि प्रवासी स्वर्मौली करोहार
1: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रण श्रण के अपडेट्स के लेके हम आपकी सेवा में

0: उपस्थित रहते हैं।
1: जी फजमान, 5 बजे तक जो है हम अपडेट साझा करना चाहेंगे अपने श्रोताओं के साथ। तो 5 बजे तक 27,961 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। पुरुषों की संख्या रही है 17,843, महिलाएं 9,264, बालक 334, साधु 181, साध्वी 19, ट्रांसजेंडर 9 और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है 311। ऐसे कुल मिलाकर 5 बजे तक 27,961 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन पाए हैं। और साथ ही साथ बताए अपने श्रोताओं को, आप बालतल में रिकॉर्ड की गई आरती समाप्त कर रहे थे। इसी के साथ ही हमारी आज की ये सभा समाप्त होती है। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बालतल में हमारे साथी इंजीनियर्स थे मंजूर अहमद नजार, इरशाद नायकू और शौकत अहमद खान। मैं आपकी साथी उद्घोषक शाहिना ऋषि और मेरे साथ उद्घोषक साइका सलीम।
0: और श्रोताओं, इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारुकवानी, श्री सुरेश चंद मीना और श्री गुलाम रसूल आखून। प्रातः 7 बजे श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण लिए आपकी सेवा में दोबारा उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि, जय हिंद।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

प्रभु श्री राम सूपनखा का आत्मनिवेदन न मानते हुए अपने भाई लक्ष्मण को इशारा करते हैं और भाई लक्ष्मण अपने प्रभु राम जी का आदेश पाते ही तीर से सूपनखा की नाक काट लेते हैं। और उधर रावण के दरबार में राग रंग उत्साह, जेहर देखा हर तरफ खाली वाहे वाह। इतने में रोवत उहां गैल सूपनखा आए, पड़ल रंग में भंग औ गैल सनाका छाए। और यह देख रावण अपनी बहन का हाल मारीच को समझा बुझाकर उसे स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी भेजते हैं।

कौनो लोक में ऐसन मामा खोजलो से ना मिली है, कौनो लोक में ऐसन मामा खोजलो से ना मिली है। गलतो करे क्यों होई तब वो भयने खातिर करी है, गलतो करे क्यों होई तब वो भयने खातिर करी।

0: के मारिच के बोलावे रामना।
1: सीता पंचवटी में स्वर्णमृग को देखकर मोहित होकर राम जी से स्वर्णमृग मांगने का प्रस्ताव रखती हैं।

लक्ष्मण का समझाए के राम बढ़ौले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज़ में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना।

0: ये आकाशवाणी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
1: आज प्रस्तुत है इस विशेष नाटक की छठी कड़ी।

0: कुंदेन्दीवर सुंदरावती बलौ विज्ञान धामा वुभौ शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृंद प्रियौ माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ सद्धर्म वरमौ हितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौ तौ हिना। सीता जी की खोज में आगे बढ़ते हुए श्री राम जी ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे। वहां सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। महापराक्रमी राम और लक्ष्मण को आते देखकर सुग्रीव पहले तो चिंतित हुए कि कहीं बाली ने ही तो इन्हें नहीं भेज दिया है। फिर विचार कर हनुमान जी को सारी स्थिति की जानकारी के लिए भेजा। हनुमान जी ब्रह्मचारी का रूप धारण कर श्री राम जी के निकट पहुंचे।
1: भद्र पुरुषों की सेवा में मेरा प्रणाम।
2: प्रणाम।
1: कुतुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बनबीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेत बिचरहु बन स्वामी। कहीं आप ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीन देवताओं में से तो नहीं है, या फिर आप नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन

0: परंतु आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर तुम पूछो कस नरकी नाई। तब माया बस फिरहु भुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीन बंधु भगवान।
1: हनुमान हनुमान,
0: मानता हूं प्रभु मैं अवगुणों की खान हूं, किंतु आप मुझको भूल जाए। स्वामी मैं मानता हूं हर जीव आपकी माया से मोहित है, आपकी कृपा से ही भवसागर से पार हो सकता है। फिर प्रभु मैं तो भजन उपाय कुछ भी नहीं जानता। जिस तरह पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है, उसी तरह सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहता है।
1: हनुमान हनुमान उठो, मेरे हृदय से लग जाओ।
2: तात, आपके नेत्रों में अश्रुकण।
1: यह अश्रुकण नहीं लक्ष्मण, यह हनुमान से मिलने का उल्लास है। अपने मन में ग्लानि मत लाओ कभी, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो।
2: सब आपको समदर्शी कहते हैं, आपके लिए ना कोई प्रिय है ना प्रिय है।
1: पर मुझे सेवक प्रिय है, क्योंकि मुझको छोड़कर उनका कोई और सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत।
0: नाथ सैल पर कपिपत रही, सो सुग्रीव दास तब आई। तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानी तेहि अभय करीजिए। सो सीता कर खोज करा इह, जहां ता मरकट कोट पठा इह।
3: इस प्रकार हनुमान ने श्री राम जी को सुग्रीव की कथा समझाई, फिर दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को इस प्रकार हनुमान के साथ आते देखा, तो अपने जन्म को धन्य समझा। मन में सोचने लगा, हे विधाता, क्या ये मुझसे स्नेह करेंगे? उनके आते ही सुग्रीव ने उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया। राम ने उन्हें कंठ से लगा लिया। तब हनुमान ने उन दोनों को एक दूसरे की गाथा सुनाकर, अग्नि की साक्षी कर, उन दोनों में मित्रता करवाई। कीनी प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाखा।
4: वानर राज, मेरे भाई महापराक्रमी राम हैं। हम दोनों अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। पिता की आज्ञा से वन में आए हैं। राम के शौर्य से संपूर्ण वन राक्षस विहीन हो चुका है। खर, दूषण, त्रिशरा और कबंध जैसे महाबली राक्षस राम के हाथों मारे जा चुके हैं। इस पर खींचकर राक्षस राज रावण ने सीता जी का अपहरण किया है। हम उन्हें ही खोजते हुए यहां तक पहुंचे हैं।
5: देव, आप लोग चिंता ना करें, सीता जी आपको मिल जाएंगी। एक बार मैं यहां बैठा हुआ अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहा था। गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हमें ही देख दीने पटडारी।
1: वो वस्त्र मुझे दिखाओ सुग्रीव।
5: अभी लो प्रभु, ये लीजिए प्रभु।
1: वही हैं, सीता के ही वस्त्र हैं।
5: प्रभु आप चिंता ना करें, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। मैं वो हर संभव उपाय करूंगा जिससे सीता जी आपको मिल जाएं।
1: मुझे तुम पर विश्वास है सुग्रीव। अब एक बात बताओ सखा, तुम इस प्रकार वन में क्यों रह रहे हो?
5: स्वामी, मैं और बाली दो भाई हैं। कभी हम दोनों में ऐसा स्नेह था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार की गाथा है, मैं दानव का महाबली पुत्र मायावी हमारे नगर में आया और आधी रात के समय ऊंचे स्वर में बाली को ललकारने लगा। बाली शत्रु की ललकार कैसे सहन कर सकता था? बाली हुंकार कर उसके पीछे भागा। मैं भी ये सब देख भाई के साथ साथ चला।

0: तुम ओ दुष्ट मायावी थे, मैं तुझे तेरी ललकार का प्रत्युत्तर दूंगा।
1: सुग्रीव।
2: हाँ भैया।
0: तुम देख रहे हो मायावी इस पर्वत की गुफा में घुस गया है, तुम एक पखवाड़े तक यही मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं 15 दिन तक लौट कर नहीं आ सका तो समझ लेना मेरी मृत्यु हो चुकी है।
1: भैया ये आप क्या कह रहे हैं?
0: मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं गुफा भी जाकर इससे युद्ध करूंगा।
1: प्रभु मैं वहां 1 मास तक रहा, तब एक दिन मैंने देखा गुफा से खून की बड़ी धारा बह निकली है। मायावी ने बाली को मार दिया है और मुझको आकर मार देगा, क्योंकि मैं बाली से अधिक बली नहीं हूं। ये सोच मैं गुफा के द्वार पर विशाल शिलाखंड लगाकर लौट आया। मंत्रियों ने राजधानी को बिना स्वामी के देखा, मेरी इच्छा ना होने पर भी उन्होंने मुझे राजा बना दिया।
2: चुप क्यों हो गए सुग्रीव, बोलते क्यों नहीं?
1: कुछ दिनों बाद बाली शत्रु को मारकर घर लौटा। आश्चर्य तो ये था प्रभु कि उसके हृदय में मेरे प्रत्येक शत्रु के समान रोष था। रिपुसम मोही मारे से अति भारी, हरि लीने से सर्वस्व अरिनारी, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरो बिहाला, यहां साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहू मन माही।
3: सुनो सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न उपरे ही प्राण। मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है, सिद्धांत कहता है जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरिसम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना, जिनके असीमति सहज न आई, ते सटकत हटी करत मिताई। अतः सका सुग्रीव मेरे बल पर अब तुम अपनी चिंता छोड़ दो, मैं हर प्रकार तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा।
1: देव बाली महाबली और अत्यंत रणधीर है, देखिए वो दुंदुभि राक्षस की अस्थियों का समूह है, ताड़ के वृक्ष हैं। ऐसी बात प्रचलित है कि जो इनका विनाश कर सकेगा उसी के द्वारा बालीवध होगा।
3: तो लो मैं इन्हें एक ही बाण से नष्ट किए देता हूं।
1: आश्चर्य, एक ही बाण ने यह चमत्कार कर दिखाया। मुझको विश्वास हो गया कि आप निश्चित वाली का वध करेंगे।
3: निश्चिंत रहो सुग्रीव, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा।
1: बाली तो मेरा उपकारी है, जिसकी कृपा से दुखों का नाश करने वाले आप मुझे मिले। नहीं प्रभु, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, सुख संपत्ति परिवार और अहम का त्याग कर मैं आपकी सेवा करूंगा। मुझे वरदान दीजिए कि मैं सब कुछ त्याग कर दिन रात आपका भजन करूं।
3: ऐसा ही होगा, मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं होते। बाली मारा जाएगा और तुम किष्किंधापति बनोगे। उठो सखा, यह वैराग्य की वाणी छोड़ो और बाली से युद्ध करने को तत्पर हो जाओ। आओ मेरे साथ।
4: बाली, बाली, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूं, शक्ति है तो आकर मुझसे युद्ध करो।
5: आज इस सुग्रीव को क्या हो गया, कहीं भांग तो नहीं खा गया?
4: ठहर, मैं अभी तेरी खबर लेता हूं।
6: स्वामी, स्वामी, पहले मेरी एक बात सुनिए।
5: क्या है?
6: ये सुग्रीव नहीं गरज रहा, ये राम और लक्ष्मण की शक्ति गरज रही है। सुनो पति, जिन्हें मिले हो सुग्रीवा, ते तो बंधु तेज बल सीमा, कोसले सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा।
5: भीरु प्रिय, राम समदर्शी हैं, यदि वे मुझे मारेंगे तब भी मुझको परम पद प्राप्त होगा।
1: दुहाई है प्रभु, आपकी दुहाई है। मैंने तो

0: आपसे कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं, मेरा काल है। मैं भी विवश था सुग्रीव, तुम दोनों भाई समान रूप के हो। मैं भ्रम में पड़ गया, सोचा कहीं बाली के धोखे में तुम ही ना मारे जाओ। लो ये पुष्पमाला धारण करो ताकि मुझको तुम्हारी पहचान रहे। जाओ निश्चिंत होकर युद्ध करो।
1: स्वामी आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, इस पर भी आपने पेड़ की ओट में छिपकर व्याद की भांति मुझे मारा। मैं पहले सुग्रीव प्यारा, अब कुन कमरनाथ मैं मारा।
0: अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनुसट कन्या सम एचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बधे कछु पाप न हुई। मोढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिकावन करसी न काना। मम भुजबल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी।
1: स्वामी स्वामी आपसे मैं चतुराई में नहीं जीत सकता। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति पाकर भी मैं पापी ही रहा।
0: सुनो बाली, मैं तुम्हारी देह को अचल करता हूं, तुम अपने प्राणों की रक्षा करो।
1: नहीं नहीं कृपा निधान रही, मुरीगण जन्म जन्मांतर यत्न करने पर भी जिस गति को प्राप्त नहीं होते, वो मुझको सहज में ही मिल गई है। चाहने पर भी अंत समय लोग राम नाम नहीं ले पाते, और मेरे सम्मुख तो साकार राम खड़े हैं। ऐसा संयोग क्या फिर आएगा। सो नयन गोचर जासुकुन, नित नेति कहीं श्रुत का वही, जित पवन मन गो निरस करी, मुन ध्यान कबूक पावही। मोहि जानी अति अभिमान बस, प्रभु कहु राखु शरीर ही, अस कबन सट हटि काटी सुरतर बारी करही बबूरही। अब नाथ करि करुणा विलो कहु, देहु जो वर मांगहु, जही जोनी जन्मों कर्म बस, तह राम पद अनुराग हूँ। प्रभु देवताओं और मनुष्यों के नाथ, ये मेरा पुत्र अंगद है। बल पराक्रम और विनय में मेरे ही समान है, इसकी बाह पकड़ कर आप इसे अपना दास बनाइए, इसे आश्रय दीजिए।
0: तथास्तु।
2: स्वामी, मैं तो आपको पहले ही समझा रही थी, पर आपने मेरी बात न मानी।
3: पिता, तुम्हारे बिना अब हमारा सहारा कौन बनेगा?
0: देवी तारा, धैर्य से काम लो। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पवन, इन्हीं पांच तत्वों से ये अधम शरीर रचा गया है। वो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है। जीव तो नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो?
2: प्रभु, मुझको अपनी परम भक्ति का वरदान दो।
0: निश्चित देवी। सखा सुग्रीव, बाली तुम्हारे अग्रस्त है, विधिवत इनका दाह संस्कार करो। और लक्ष्मण, तत्पश्चात तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव को राजपद और अंगद को युवराजपद से सुशोभित करो।
4: रघुपति की प्रेरणा से सब लोग उन्हें प्रणाम करके विदा हुए, सभी कार्य विधिवत हुए। तब लक्ष्मण जी ने सब नगरवासियों और ब्राह्मणों के

समाज को बुलाकर उनके सम्मुख सुग्रीव को राज्य दिया और अंगद को युवराज बनाया। अब ग्रीष्म बीतकर वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी। वर्षा काल बिताने के लिए श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके।

0: ताज, आज आपका मन कुछ उद्विग्न लग रहा है।
1: प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य और उसके गूढ़ रहस्य में खो गया है मन। इस वर्षा ऋतु को देखकर अनेक विचार मेरे मन में उठ रहे हैं।
0: मैं आपकी व्यथा को समझता हूँ तात। हमारे वनवास काल में जितनी बार वर्षा ऋतु आई है, जानकी जी साथ रही हैं। इस बार उनकी अनुपस्थिति आपको व्याकुल किए हुए है।
1: तुम ठीक कहते हो तात। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मन बोरा। उधर देखो लक्ष्मण, जैसे विद्वान विद्या पाकर नम्र हो जाते हैं, उसी प्रकार बादल पृथ्वी के पास आकर बरस रहे हैं। पर्वत बूंदों के आघात को इस प्रकार सह रहे हैं जैसे संत लोग दुष्टों के वचनों को सहते हैं। छोटी छोटी नदियां किनारे तोड़कर इतराती हुई चल रही हैं जैसे क्षुद्र लोग थोड़ा सा धन पाते ही मर्यादा तोड़कर इतराने लगते हैं।

0: लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई और परम सुहावनी शरद ऋतु आ गई है, किंतु
1: किंतु क्या तात, आप चुप क्यों हो गए?
0: लक्ष्मण, अभी तक सीता के विषय में कोई समाचार नहीं मिला। एक बार कैसे भी उसका समाचार प्राप्त हो जाए तो राक्षस राज्य क्या काल को भी जीतकर मैं उसे ला सकता हूं। यदि वह कहीं भी जीवित हुई तो मैं इसे यत्न करके अवश्य लाऊंगा।
1: तात,
0: सुग्रीव हूं सुधी मोरी बिसारी, पावा राजकुस पुर नारी, जही सायक मारा मैं बाली, तही सरहतों मूड कह काली।
1: बहुत दिनों बाद आज धनुष पर पांव चढ़ाने का अवसर मिला है। मर्यादा पुरुषोत्तम, आप शुभ ना हो, मैं अभी किष्किंधा जाकर सुग्रीव की बुद्धि ठिकाने लगाता हूं।
0: वहां जाकर कोई अनिष्ट न कर देना लक्ष्मण, केवल भय दिखा।

0: जाकर सखा सुग्रीव को यहां ले आओ। जिनकी कृपा से मद और मोह छूटते हैं ऐसे श्री राम जी को कभी स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है? ये क्रोध तो केवल लीला मात्र है। ज्ञानी ऋषि जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति लगा रखी है वे ही इस लीला के रहस्य को जानते हैं। इधर किष्कंधा में हनुमान मन ही मन सोचने लगे, श्री राम जी के कार्य को सुग्रीव तो भूल ही गए हैं। उन्होंने जाकर सुग्रीव को स्मरण कराया। सुग्रीव ने कहा, वास्तव में ही हनुमान, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। विषय वासना ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया है। ऐसा करो पवन पुत्र, जहां जहां वानरों के समूह रहते हैं वहां वहां दूतों को शीघ्र भेजो और कहलवा दो कि 15 दिनों में जो नहीं आएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जह तह कपि धाए।
1: कहा है सुग्रीव, उन्हें शीघ्र बुलाओ, नहीं तो मैं पूरे नगर को जलाकर राख कर दूंगा।
2: मैं युवराज अंगद प्रणाम करता हूं देव, हम लोगों को अभिदान दें, हमारे अपराध को क्षम करें।
1: डरो मत अंगद।
3: हनुमान, हनुमान।
4: आज्ञा महाराज।
3: देवी तारा को साथ ले जाकर लक्ष्मण जी को समझाओ, उनके क्रोध को शांत करो।
5: हम उन्हें अभिभवन में लेकर आते हैं महाराज। मैं प्रणाम करती हूँ भगवान।
4: मेरा भी प्रणाम स्वीकारें देव, हमें आशीष दें।
1: मेरा आशीष सदैव आप लोगों के साथ है।
5: आइए प्रभु, राजभवन को अपने चरणों से पवित्र कीजिए।
4: मुझको अपनी भूल का पश्चाताप है देव।
1: उठो वानरराज, मेरे कंठ से लग जाओ।
4: हे नाथ, विषय के समान कोई मत नहीं है, मैं तो साधारण जीव हूं, जबकि ऋषियों तक के मन में ये मोह उत्पन्न कर देता है।
6: लक्ष्मण जी, हमने सब दिशाओं में बानर यूथ बुलाने के लिए दूत भेजे हैं।
1: ठीक है, आओ अब श्री राम जी के पास चले।
0: हर के चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जय रघुनाथ। श्री राम सुग्रीव आदि के बीच जानकी जी की खोज के लिए बातें होने लगी। यही विधि होत बत कही आए बानर जूत, नाना बरन सकल दिसि देखिए कीस बरूत। तब सुग्रीव की आज्ञा पाकर सब बानर योद्धा जहां तहां खड़े हो गए। सुग्रीव ने उन्हें सारी बातें समझाते हुए कहा,
4: उसके बाद
3: शांत हो जाओ, सब शांत होकर सुनो। वानर वीरो, सीता जी की खोज के लिए आपको यहां बुलाया गया है, यह भगवान राम का कार्य है। मेरा अनुरोध है आप सब लोग सीता जी को जाकर खोजो, इसके लिए 1 मास की अवधि है। जो बिना सुध लिए अवधि समाप्त करके लौटेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा।
7: भगवान राम की जय! भगवान राम की जय! बानर राज सुग्रीव की जय! बानर राज सुग्रीव की जय! बानर राज सुग्रीव की जय!
3: सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुध पूछे सबकाहू, मन क्रम वचन सो जतन विचारहू, रामचंद्र कर काज सवार।
4: यह मेरी मुद्रिका है हनुमान, यह सीता को देना, उन्हें सब प्रकार से समझाना, मेरे विरह प्रेम शक्ति सबके विषय में उन्हें बताना और शीघ्र लौटना।
0: हनुमत जन्म धन्य करी जाना, चलेउ हृदय धरि कृपा निधाना, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। श्री राम जी से आज्ञा लेकर ये वानर योद्धा सीता जी की खोज में आगे बढ़े।

0: सबने उस तपस्विनी को प्रणाम किया, अपना वृत्तांत सुनाया, उससे आज्ञा लेकर जी भर स्नान किया, वाटिका से मधुर फल तोड़ तोड़ कर खाए, थोड़ी देर आराम किया। तब तपस्विनी ने इन्हें अपनी कथा सुनाई और कहा, मैं तो अब वहां जा रही हूं जहां भगवान रामचंद्र हैं, उनसे उनकी अनपायनी भक्ति पाकर बद्रिकाश्रम चली जाऊंगी। तुम लोग इस विवर से निकलकर आंखें मूंदना, आंखें मूंदते ही सिंधु तट पहुंच जाओगे।
1: कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। अवधि समाप्त हो चुकी है और काम कुछ भी नहीं हुआ।
2: दोनों प्रकार से अब तो मृत्यु दिख रही है। इधर सीता जी का पता नहीं लग रहा, कब तक इन पनों में भटकते रहेंगे। किष्किंधा लौटे तो बानर राज हमारा वध कर देंगे। मेरा वध तो वो मेरे पिता की मृत्यु के साथ ही कर देते। भगवान श्री राम ने मेरी रक्षा कर ली। सुग्रीव का मुझ पर कोई एहसान नहीं है। अब मुझको तो अपनी मृत्यु में कोई संदेह नहीं दिख रहा।
1: सुनो युवराज, तुम्हारे कारण सभी अधीर हो रहे हैं, सभी की आंखों में पानी है। ये हम सबका निर्णय है, हम सीता जी की सूचना लिए बिना किष्किंधा नहीं लौटेंगे।
3: आओ लवण सागर के तट की ओर चलते हैं।
1: यहां कुशा बिछाकर थोड़ी देर विश्राम करें।

0: 30 à l'attaque.
1: Cap minier.

0: फला जटायु का बड़ा भाई संपाती तो नहीं?
1: मेरा विचार है वही है।
2: आज सब ही कह पर चनकारा दिन चले आहार बिन मरा तब हमने मिल भरी उधर आहारा आज दिन बिली एक ही बारा।
3: अब तो साकार मृत्यु सामने खड़ी हुई है,
0: इससे निपट लेंगे। सोचने की क्या बात है,
3: वास्तव में कितना जटायु के समान कोई धन्य नहीं हो सकता। वे परम भाग्यवान है जो भगवान राम की काज अपने प्राण त्याग कर परम धाम।
2: सुनो बंधु, मुझे समुद्र के तट तक ले चलो, मैं जटायु को दिलाई के दे दूंगा। मैं तुम्हें सीता जी के बारे में बताऊंगा।

0: सुनो वानर वीरो, मैं और जटायु बचपन से ही महत्वाकांक्षी थे। यौवनावस्था में मैं और वो सूर्य तक पहुंचने की आकांक्षा में उड़े। सूर्य की अपार तेज को सहन न कर सकने के कारण वो तो पथ से ही लौट आया, पर मैं दम भी उड़ता ही चला गया। रवि के निकट पहुंच गया, सूर्य के अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं घोर चीत्कार के साथ धरती पर गिरा।
1: फिर
0: चंद्रमा नामक ऋषि को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने मेरा उपचार किया, अपने ज्ञान द्वारा मेरे दंभ को नष्ट किया। उन्होंने ही मुझको बताया था कि त्रेता युग में भगवान मनुष्य का रूप धारण करेंगे। राक्षसपति उनकी पत्नी सीता का हरण करेंगे। सीता की खोज में प्रभु अपने दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तेरे दुख दूर हो जाएंगे, तेरे पंख हो जाएंगे। तू उन्हें सीता दिखा देना। आज ऋषि की वाणी सत्य हुई है।
1: सीता जी कहाँ है?
0: हाँ, देखो उधर, देखो उधर, त्रिकूट पर्वत पर लंका वसी हुई है। वहां रावण निडर होकर राज्य करता है। उसी की अशोक वाटिका में सीता जी विचार मग्न बैठी है। मैं उनको देख रहा हूँ, मैं देखा हूँ, तुम नहीं। गीधी दृष्टि अपार, बूढ़ भय उन्नत करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हार। तुमसे जो भी शतयोजन समुद्र पार कर जाएगा, उसे ही भगवान का कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दृढ़ता से काम लो, राम को हृदय में धारण करो। देखो देखो, प्रभु कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया है, पंख उगाए हैं। कायरता छोड़, लंका पहुंचने का कोई उपाय करो। अच्छा अच्छा, मैं चलूंगा।
2: बूढ़ा हो चुका हूं, अब शरीर में तरुणाई का लेश मात्र भी नहीं रहा। जब भगवान राम ने वामनावतार लिया था, तब मेरे शरीर में अपार शक्ति थी। बलि को बांधते समय प्रभु ने अपनी देह इतनी बढ़ाई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर मैंने दो घड़ी में ही दौड़कर प्रभु के उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी।
3: मैं समुद्र पार तो जा सकता हूं, किंतु लौटने के बारे में मेरे मन में कुछ संदेह है।
2: तुम सब कुछ कर

0: रखने में समर्थ हो, किंतु तुम हमारे नायक हो, तुम्हें हम कैसे भेज सकते हैं? हनुमान, हनुमान, महाबली, तुम चुप क्यों बैठे हो? पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम्हारे लिए कठिन है, जिसे तुम नहीं कर सकते? भगवान श्री राम का कार्य पूरा करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है।
1: हनुमान जी का ये अद्भुत रूप है, लगता है जैसे साक्षात सुमेरु पर्वत हो।
2: मैं इस समुद्र को खेल खेल में ही पार कर जाऊंगा। मैं सहाय को समेत रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहां ला सकता हूं।
3: जामवंत, मैं पूछू तो उचित सिखावन दीन जहू मोई।
0: तुमने हम सबको उबार लिया है तात, बस तुम इतना ही करो, सीता जी को देख और उनके समाचार लेकर लौट आओ। उसके उपरांत कमल जैसे नेत्रों वाले श्री राम राक्षसों का संहार करेंगे। कौतुक के लिए वानर सेना भी साथ होगी।

0: भवन भजन भवन जन गुण भवन जन गुण राम अपन राम
1: काही गुण बजत का

युग पुरुष संत शिरोमणि कबीर दास जी ने कहा है, हम एक से ही अनेक हुए हैं और फिर एक ही हो जाएंगे। और जब हम सभी उस एक परमात्मा को जान लेंगे, तब हम सब भी उस एक में ही मिल जाएंगे।

और इस संसार सागर से तारने वाले सिर्फ एक है, सद्गुरु साहिब। जो ये सत्य जान जाते हैं वे भव सागर से तर जाते हैं।

का दिल दुहारी का काया काशी जान दस द्वारे का तेहरा तामे ज्योति बिछान ईश्वर अंश जीवा विनाशी इसी में काबा इसी में काशी।

इस जगत का पालनहार अपने भक्तों से जैसे प्रेम करता है, वैसे ही अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है। हर भक्त के लिए प्रभु के दरबार के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, मगर ईश्वर तक पहुंच पाना आसान काम नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन, नाम सुमिरन, उसका मनन चिंतन करते हुए आराधना के अलग अलग मार्गों का सहारा लेते हैं, मगर ये सब करते हुए भी जब ईश्वर का साक्षात्कार ना हो तो भक्त हरि से शिकायत के स्वर में याचना करता है, मैं कौन सी राह अपनाऊं कि प्रभु तेरे दर्शन हों।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दे। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।